接下来将播放另一首民歌，请大家收听一下。这首民歌是古巨基的《棒》的民歌，请大家收听一下。

माया नगरी के राजा शील निधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शील निधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर

के सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43

0: धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद वाशिंगटन।
2: हिंदी साहित्य के परिष्कार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ लेखक और समालोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखिका और संपादक डॉक्टर शमा शर्मा, वरिष्ठ कवि और लेखक श्री विनय विक्रम सिंह और युवा लेखक डॉक्टर उमा शंकर चौधरी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर उमा शंकर। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री कामता प्रसाद।
3: श्यामलाल कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा 6 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 21वीं सदी का साहित्य सृजन और विमर्श विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वानों ने विषय से अलग अलग आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापनरत अध्यापकों प्राध्यापकों शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी के प्रथम सत्र में बीज वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर रामेश्वर राय ने कहा कि साहित्य की यह प्रवृत्ति होती है कि एक तरफ उसमें सनातनता होती है और दूसरी तरफ देशकाल बद्धता भी, जो इन दोनों सिरों को साथ लेता है वही बड़ा रचनाकार कहलाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा और आलोचक प्रोफेसर सुधा सिंह ने कहा कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन साहित्य अपनी परंपरा से कटा हुआ नहीं हो सकता। 21वीं सदी के इन 25 वर्षों के समय और समाज को धारण करने वाली संस्कृति बदल गई है और आज का साहित्य इसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हिंदी साहित्य में विधाओं के बीच दूरियां और जकड़बंदियां टूट गई हैं और विभिन्न विधाओं का मिश्रण हो रहा है। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रसिद्ध आलोचक और मीडिया विमर्शकार प्रोफेसर सुधीश पचौरी ने डिजिटल क्रांति के संदर्भ को सामने रखते हुए साहित्य सृजन की बदलती प्रवृत्तियों और चुनौतियों को पहचानने की बात की। उन्होंने समकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हुए कहा कि सृजन वही है जो ऑर्गेनिक तरीके से विकसित हो तथा कच्चे से पक्के की ओर बढ़े। उन्होंने लेखन को इलीट कार्य बताते हुए कहा कि लेखन फुर्सत में होता है, फिर भी वर्तमान समय का साहित्य दुख पर केंद्रित है। उन्होंने वर्तमान शोध की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि शोध केवल सामान्य विवरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विषय के भीतर गहन विश्लेषण होना चाहिए। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र की शुरुआत कहानीकार एवं संपादक ARSD कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्रीधरम द्वारा की गई। इस अवसर पर कहानीकार स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रोफेसर टेकचंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जैसे जैसे हम लोकतांत्रिक होते जाएंगे अस्मिताएं आती रहेंगी। उन्होंने वर्तमान कहानियों की विषय वस्तु तथा सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते हुए ATM बहु, चावी, सरोगेट मदर आदि कहानियों का उल्लेख किया तथा बताया कि वर्तमान समस्याएं किस प्रकार साहित्य और कहानियों में अभिव्यक्त हो रही हैं। कवित्री एवं कहानीकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ज्योति चावला ने अपने वक्तव्य में कहा कि सृजन और विमर्श को सृजन बनाम विमर्श के रूप में देखती हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी क्रांति, डेटा, विस्थापन, सत्ता, राजनीति, प्रतिरोध, स्त्री विमर्श तथा लैंगिक चेतना पर विचार व्यक्त किए। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल राय ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज का साहित्य और आलोचना दूसरी परंपरा से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने स्त्री विमर्श, विकलांग विमर्श, युवा विमर्श आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि आज अनेक प्रकार के विमर्श साहित्य में उपस्थित हैं। उन्होंने वर्तमान साहित्य को फास्ट फूड की संज्ञा देते हुए कहा कि साहित्य को आंख और दिमाग खोलकर पढ़ना चाहिए। उन्होंने शोध में बढ़ती कट एंड पेस्ट प्रवृत्ति, अनुवाद की समस्याओं तथा साहित्य के समक्ष उपस्थित संकटों पर चिंता व्यक्त की। इस गोष्ठी के संयोजक एवं विभाग प्रभारी प्रोफेसर समरेंद्र कुमार थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकरलाल सभागार में 7 मई को डॉक्टर प्रशांत वर्थल की बहुचर्चित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री रामलाल, मुख्य अतिथि DD News के संपादक एवं लेखक श्री अशोक श्रीवास्तव एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय श्री रामलाल जी ने कहा कि भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि यदि भारत अपने मूल सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टि को पुनः आत्मसात करता है तो वह पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण को समय की आवश्यकता बताया। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने पुस्तक के लेखक डॉ. प्रशांत की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक भारतीय चेतना के पुनर्निर्माण

0: के इस महायज्ञ में एक महत्वपूर्ण आहुति के समान है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह पुस्तक केवल पढ़ने योग्य ही नहीं बल्कि भारतीयता को समझने का एक वैचारिक दस्तावेज है जिसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री कामता प्रसाद। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा थी।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं काजल आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत की जिन्होंने अपने नवाचार, परिश्रम और कृषि के प्रति समर्पण से न केवल किसानों की तकदीर बदली बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया। आज के इस हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कृषि वैज्ञानिक गेना भाई पटेल जी। आइए इनसे जानते हैं इनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में। गेना भाई पटेल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो मैं आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कृषि की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ।
3: नमस्कार मित्रों, मैं गुजरात से लाखनी तहसील से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमारा नया वाव थराज जिला बन गया है। वहाँ से मैं एक छोटा गांव सरकारी गोलिया गांव है वहाँ से आता हूँ। और मेरे पिताजी भी किसान थे, उन्होंने भी वो किसानी करते थे। मैं पांच भाई है और एक बहन है। पांच भाई में मैं सबसे छोटा हूँ
2: जी।
3: और मुझे 12 महीनों के टाइम के बाद में मुझे पोलियो हो गया था। तो मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरी माँ बहुत चिंता करती थी कैसे इसका गुजारा होगा
2: जी।
3: लेकिन हमारे भाइयों ने और हमारे पिताजी ने हमें हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके गए। मेरे बड़े भाई कंधे पे बैठा के वो लेके जाते थे।
2: क्या बात।
3: तो मैं 11 तक पढ़ा हूँ। 12वीं कक्षा तो मैंने ये बेटा बेटियों को जब मोटिवेट करने के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप घबराइए मत। 12वीं कक्षा मैंने 40 साल के बाद में पास की है। हाँ, तो कि बेटा बेटी क्या है वो अपघात कर लेते हैं, तो उनके लिए कि कोई वो ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य नक्की करते हैं तो वो उसके पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद में 12 तक ये पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया। और मेरे पिताजी, मेरे भाई जो ये कृषि करते थे तो उनमें क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा आय नहीं होती है। राई लगाते हैं, कस्टर लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, पशुपालन करते हैं
2: जी।
3: तो उसमें पैसे इतना, किसान को जितना चाहिए इतना पैसा नहीं रहता है। तो हम सोचते थे कि किसान के लिए क्या किया जाए कि हमारे पड़ोसी का भला कैसे हो। हमारा तो होता ही है लेकिन पड़ोसी का अच्छा होना चाहिए। हमारा पड़ोसी मजबूत होगा तो हम मजबूत रहेंगे
2: जी।
3: तो हमने सोचा कि हमने उसी टाइम, आज से करीबन 1990 में मैंने वो मस्टर्ड का यानी राई का कोऑपरेटिव मंडल बनाया और उनकी वजह से किसानों को रासायनिक खाद है, उनका सीड से है कम लागत में उसको अच्छा सीड मिलता था। फिर बाद में हमने दूध का डेयरी बनवाया तो गांव के किसान दूध का व्यापार करते थे
2: जी।
3: लेकिन उनसे भी हम जो चाहते थे वो नहीं होता था
2: जी।
3: तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी वजह से किसान के घर में बहुत पैसे आए। तो हमने बहुत सर्च किया, हमने बहुत भारत भ्रमण किया यानी 3-4 राज्यों में मैं घुमा, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, यूपी गया। फिर मैंने देखा कि ये अनार की खेती बहुत अच्छी है
2: जी, जी।
3: तो उसी टाइम हमने हमारे भाइयों को भी बोला कि ये करने जैसा है और वो मेरे को विश्वास करते थे
2: जी।
3: कि नहीं ये बोलता है तो कुछ होगा
2: बिल्कुल।
3: तो हमने उसी टाइम 2004-05 में अनार के पौधे 18,000 पौधे ला के लगा दिए।
2: 18,000?
3: हाँ।
2: कहाँ से लाए आप?
3: महाराष्ट्र से।
2: और कहाँ लगाया आपने?
3: हमारे खेत में।
2: अरे वाह, 18,000 बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ। जी।
3: एक क्योंकि इसका मैं एक सोच ऐसी रखता था कि अपने को एक ट्रक तो होना ही चाहिए मान
2: जी।
3: एक ट्रक भर के हम कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जा सकते, लेकिन किसान के पास छोटे रूप में जो माल रहता है तो उसको बेचने में बहुत तकलीफ होती है
2: जी।
3: फिर पौधे के लगाने के बाद में बहुत सारी, जब हम कुछ नया करते हैं तो किसान लोग है कि कोई भी लोग रहते हैं वो बहुत नेगेटिव बात करते हैं कि होने वाला
2: शुरुआत में।
3: हाँ, शुरुआत में कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसा है, ऐसा है। लेकिन वो लगा दिया, उसके बाद में 3 साल के बाद में हमारे पौधे में

0: माल आ गया,
1: अरे वाह, फल आ गया
0: फल आ गए। क्योंकि
1: स्वामी।
0: पहले तो हमने अनार भी देखा ही नहीं था, सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई फ्रूट देखे थे पहला, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं थी।
1: अरे वाह,
0: तो हमारी यूनिवर्सिटी है, सरदार कृषि नगर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी हमें गाइड किया, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिक वैज्ञानिकों ने हमें गाइड किया, हमारे जिला के खेतीबाड़ी अधिकारी लोग रहते हैं उन्होंने भी गाइड किया, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब कृषि मेले लगाए थे उसी वक्त तो उन्होंने से बात किया था कि सर ये किसानों का बहुत दिक्कत वाला मामला है पानी के बारे में। तो हमारे क्या है, हमारे बनासकांठा ड्राई एरिया है बिल्कुल, तो वहाँ पे पानी का कोई वो नहीं रहता है, तो इसीलिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों के लिए 50% सब्सिडी बना दिया ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के लिए, तो उसकी वजह से छोटे किसानों को बहुत फायदा हुआ। हमारे लगाने के बाद में 3 साल के बाद में जब हम पैसे मिलने लगे तो किसान भाइयों ने भी लगाना शुरू कर दिया, वो आने लगे हमारे खेत पे। तो उसी टाइम करीबन 10 साल में मेरे फार्म पे 80,000 किसानों ने मुलाकात की है,
1: 80,000
0: मेरे फार्म के किसान लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी, बसें आती थी, बाइक पे आते थे, सभी आते थे। तो हम सुबह से 6:30 बजे से बैठ जाते थे और किसान भाइयों को बताते रहते थे कि आप ऐसे खेती करो, आप ऐसे करिए खेती करो। हमारे बड़े भाई है जो फील्ड में बताते थे हमारा फार्म। तो फिर उसके बाद में किसान लोग जुड़ने लगे, तो हमने सोचा कि किसानों को हेल्प करना चाहिए, तो हमने वो नर्सरी बना दी अनार की। तो उसमें नई मुनाफा नई नुकसान, ऐसी तरह से हमने किसानों को पौधे उनको लगाने के लिए पौधे देने लगे। फिर उस जो कोई गरीब किसान है उसके पास से हमने पैसे नहीं लिए, और सभी किसानों को बोला कि आप लगाइए, और हमारा ट्रैक्टर रहता था उसकी वजह से उनको छिड़काव करना है दवाइयाँ वगैरह का तो हम करते थे बिल्कुल फ्री में, आप काम कीजिए, और ऐसी तरह से हमारी अनार की क्रांति काम आ गई। फिर
1: जी
0: बहुत सारे किसानों ने लगा दिए, हमारे बनासकांठा में करीबन 11,000 हेक्टर में लग गया, फिर हमारे कच्छ में 11-15 हज़ार हेक्टर में लग गया, फिर हमारे
1: अनार।
0: अनार, फिर हमारे पास में राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, जालौर जिला है, जैसलमेर जिला है, वहाँ पे बहुत सारे अनार लगे, जो रेती के टिंबे रहते थे वहीं पे अनार का पौधे लहलाते रहे
1: क्या
0: अभी
1: बात,
0: तक।
1: क्या बात। तो
0: जी
1: इसके लिए क्या करना पड़ा आपको, जो हमने रेतीली खेतों में, रेतीली जो एरिया था वहां भी अनार की खेती
0: हाँ,
1: थी,
0: उसे वो
1: मेहनत
0: एक
1: लगी होगी बहुत उसमें, और चैलेंजेस भी आए होंगे।
0: बिल्कुल चैलेंज, लेकिन ये जब ड्रिप इरिगेशन आ गया उसकी वजह से किसान का सब मेहनत वो था वो कम हो गया, क्योंकि पानी हर पौधे के उसमें जाता है, तो
1: जी
0: उसकी वजह से कोई दिक्कत वाला मामला नहीं रहा, और किसान इतने खुश हो गए कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान अनार के किसान है, 1 हेक्टर की मैं बात करता हूँ, तो 1 हेक्टर में 1,000 पौधे लगाते थे,
1: जी
0: तो एक पौधे से 25 से 30 किलो माल आता है, मेरा तो सरेराज 50 टन माल निकला था, लेकिन 25 टन मानते हम, तो एक पौधे से 25 किलो माल मानते हैं और 100 रुपया 1 किलो की आय होती है, तो एक पौधा 2500 रुपया देता है,
1: 2500 रुपये देता,
0: और
1: ठीक है
0: एक
1: जी।
0: हजार पौधे 1,000 × 2500 यानी 25 लाख रुपया 1 हेक्टर से
1: एक
0: किसान
1: हेक्टर
0: को
1: से हो
0: मिलना है।
1: जाता है, तो इतना आपने किया,
0: हाँ
1: बहुत बड़ा काम है ये,
0: जी
1: बहुत बड़ा काम। तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपकी जो सोच रही है उसमें समाज और किसानों के प्रति जो आपका आपकी संवेदनशीलता थी वो कैसे आई, कैसे आपकी सोच इस तरह से निकली?
0: मैं मेरे पिताजी ने मुझे वारसा में दिया है ये, तो कि अपने किसी को हेल्प करना है, कोई जो गरीब किसान है कि कोई गरीब और भी है कुछ भी, तो उसी के लिए काम करना है, वो तो हम परंपरा से चली आती है
1: जी
0: कि हमारा दुश्मन भी हो तो भी उसको अच्छा रास्ता
1: क्या
0: बताना
1: बात, वाह वाह। जैसे
0: है।
1: हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया की जो बात करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: ऐसा
1: आपका एक तरह से आपने इसी स्किल को डेवलप किया और अनारों की खेती शुरू कर दी जो आज इस मकाम पर पहुंची है। तो लोग आपको एक कर्म योगी के रूप में देखते हैं, क्या आप
0: जी
1: खुद को ऐसा मानते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
0: मैं ऐसा तो कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है, जो काम करते हैं वो उनको परसेवा लगता है, लेकिन जो परसेवे से नहाते हैं उसका ही ये काम होता है, इतना पसीना ज्यादा निकलेगा इतना पैसा ज्यादा
1: क्या
0: आएगा।
1: बात, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप अनुशासन से रहोगे, जितना आप पैशन को लेकर काम करोगे, उतना
0: बिल्कुल
1: आपको फायदा होगा, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतनी आपको खुशी भी मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो आपके द्वारा किए गए जो मेन कृषि प्रयोग हैं और जो शोध कार्य हैं जिनसे किसानों को खास तौर पे लाभ हुआ है,
0: हाँ
1: उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: हाँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तो उस टाइम जब सीएम थे उसी टाइम ये किसानों के लिए उन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन लगाया था,
1: जी।
0: तो ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी दी थी, तो हर किसान के पहले हम खेत में जाते थे तो उनको ड्रिप इरिगेशन करवाते थे,
1: जी
0: तो हमारा बनासकांठा जिला है वो ड्रिप इरिगेशन में नंबर वन हो गया। फिर उसके बाद में हम फर्टिगेशन के लिए जो किसान को उनको खाद देना है, उनको क्या करना है, तो उनके पौधे में उसके रूट में सीधा हमारा जो प्राकृतिक तरीके से हम जीवामृत बनाते हैं, तो वो जीवामृत सीधे सीधा ड्रिप इरिगेशन से जाता है, वो एक
1: जी
0: हमारा वो है। फिर पॉलीथिन मल्चिंग जो इसको खरपतवार निकलता है, तो उसकी वजह से वो पौधे के आसपास में पॉलीथिन मल्चिंग कर देते, तो उसमें नमी
1: नमी रहती है।
0: रहती है और पौधा अच्छी तरह से उसमें वो खरपतवार नहीं होता है।
1: जी
0: फिर हमारे जो पौधे हैं उनके ऊपर जो पक्षी है वो जो बगाड़ते
1: हाँ
0: हैं, तो
1: खा
0: उसके
1: जाते हैं।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: उसके लिए हम बर्ड नेट लगाते हैं, तो
1: अच्छा
0: बर्ड नेट की वजह से उसके ऊपर छांव रहती है और जो फ्रूट रहता है वो बहुत एकदम
1: सही
0: हेल्दी
1: ठीक
0: और
1: रहता है।
0: सही
1: हाँ ठीक रहता है।
0: क्वालिटी वाला
1: जी
0: निकलता है।
1: जी
0: वो एक हमने किया था। एक तोता हमारे जो अनार में बहुत बिगड़ करता है, जो अच्छा फ्रूट रहता है उसके ऊपर आके वो चांच मारता है, तो हमने क्या किया कि तोते को भी पेट तो भरना है,
1: हाँ
0: तो उसके हमने अनार के साथ में हमने गेहूं लगवा दिए।
1: अच्छा।
0: तो तोता जब वो पहला उसको धान चाहिए, तो वो गेहूं की वो
1: बाली
0: फली
1: जो होता
0: काट
1: है। हाँ
0: के
1: खा
0: लेके
1: ले।
0: जाता है और उसका पेट भरता है। और जो इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्टर पट्टी एक आता है जो ऐसे वो पवन से हिलती है, उसके सूर्य के प्रकाश से उसके तोते के आँख में वो प्रकाश पड़ता है तो भी भाग जाता है। फिर हमने एक मिनी ट्रैक्टर बसाया, तो मिनी ट्रैक्टर की वजह से हमारा जो ये जीवामृत है या हमारा जो कोई स्प्रेड है, तो वो ट्रैक्टर की वजह से छोटे ट्रैक्टर से वो स्प्रेड हो जाता है। फिर हमने ये जीवामृत वाला आपको बताऊं तो जीवामृत में कैसा होता है कि हमारी गाय होती है, उसमें 10 किलो गोबर लेना है, 10 किलो यूरिन लेना है, 2 किलो बेसन लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है, 500 ग्राम सजीव माटी होती है, वो लेके उसको एक ड्रम में 200 लीटर में डालते हैं और उसके बाद में वो स्प्रेड बनता है,
1: जी
0: तो हर हफ्ते में वो देना है। तो
1: जी
0: उसकी वजह से हमें कोई रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं
1: जरूर। ये
0: रहती है।
1: सबसे बड़ी बात
0: ये
1: है कि
0: सबसे
1: कोई ऐसे पेस्टिसाइड या रासायनिक
0: बिल्कुल
1: खाद देने की
0: पेस्टिसाइड
1: जरूरत
0: हम
1: नहीं
0: डालते
1: है।
0: ही नहीं
1: क्या
0: है।
1: बात, बहुत खूबसूरत, बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी बात कही आपने। मैं एक चीज आपसे यहाँ जानना
0: जी
1: चाहूंगी,
0: जी
1: जो ट्रेडिशनल खेती होती है, जो परंपरागत खेती होती है, और जो आधुनिक तकनीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: परंपरागत खेती रखनी चाहिए। और हम तो एक ही बात बताने के हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि अपने को रागी है, ज्वार है, हमारा जो हमारा परंपरागत जो धान है हमें ये प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए, उस उसमें जहर नहीं आता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: आपको जब देश का जो इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपको प्रतिष्ठित अवार्ड जो आपको मिला, पद्मश्री, तो उस पल आपका अनुभव कैसा रहा? क्या बदलाव आया
0: क्या
1: है?
0: बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। और
1: चलिए।
0: उन्होंने जब एक किसान के बेटे को पद्मश्री जब दिया, कोई इतनी सरकारें आती आती गई, गए सब गए, लेकिन किसी ने कोई किसान को जो रियल गांव में काम करते उनको माननीय प्रधानमंत्री जी समझ सकते। तो उन्होंने जब मैंने अप्लाई किया था 2017 में अप्लाई किया, उसी टाइम हमने वो करके भूल गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2017 के दिन सुबह में मुझे 6:30 बजे कॉल आया। तो पहले तो बिल्कुल वो हो गया कि हमारा कोई उठ गया, क्योंकि सुबह में कॉल किसी
1: हाँ
0: का
1: डर
0: ऐसे ही
1: लगता है,
0: गलत
1: डर
0: कॉल आता
1: लगता
0: है।
1: है, डर लगता है।
0: फिर बाद
1: जी
0: में हमें उन्होंने बधाई दी कि आपको बधाई हो गया ना भाई, आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है। तो फिर बाद में मुझे 26 जनवरी को ये इसका ऐलान हो गया पद्मश्री का, और 13/12/2017 के दिन माननीय प्रधानमंत्री की हाजिरी में माननीय प्रणब मुखर्जी से कर कमलों से मुझे ये पद्मश्री सम्मान दिया गया।
1: और क्या बदलाव आया उसके बाद आपके जीवन में?
0: उसके बाद में तो हमें कोई जानता नहीं था और सभी लोग जानने लगे कि गहना भाई कौन है, गहना भाई कौन है, सब मीडिया वाले आ गए, सब अखबार वाले आ गए सभी। और फिर तो बाद में किसान लोगों को बहुत हर्ष हुआ कि नहीं वाकिफ
1: वाकई
0: में
1: वाकई।
0: इसका
1: और आप जिम्मेदारी की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती
0: और
1: है।
0: बढ़
1: कृषि
0: जाती है।
1: के लिए बहुत काम किया
0: बिल्कुल।
1: आपने,
0: और
1: और
0: उनके बाद में तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है।
1: जिम्मेदारी दुगनी बढ़ गई। तो
0: बिल्कुल
1: आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है, क्या कहते हैं आप?
0: आने वाले इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने एक FPO का गठन किया है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, और उसका एक हमने संघ बनाया है। अभी हमारे साथ में 20-21 FPO जुड़ गए हैं, तो सभी हम कहाँ मिल के काम करते हैं। किसान भाई की क्या जरूरत रहती है, उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको जो चाहिए वो FPO के माध्यम से हम पूरा करते हैं। उसको अच्छा सीड चाहिए तो भी मिलते हैं, और अभी हम हाईटेक खेती पे जाना चाहते
1: क्या
0: हैं।
1: बात,
0: तो वो उसमें क्या है, उसमें उर्वरक जो रहते हैं प्रबंधक, वो हम करने ऑटोमेशन ड्रिप लगाएंगे कि इनको कितना पानी चाहिए।

थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे।

0: वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एंद पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सभी तानों बानों को लेकर हम हाजिर हैं, हमारी प्यारी महिलाओं यानी कि ग्रामीण महिलाओं और सखियों पर आधारित कार्यक्रम गृह
1: गृहलक्ष्मी,
0: लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ रेणु तवर, और मेरे साथ मेरी सहभागी
1: यमुना गर्ग।
0: सभी बहनों को हमारा
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो यमुना बहन, कहते हैं आजादी सबको पसंद है,
1: हम्म,
0: चाहे वो आज का युग हो या पुराना युग,
1: सही।
0: आजादी तो आजादी होती है,
1: बिल्कुल,
0: गुलामी किसको पसंद, किसी को भी नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: और आज का दिन बहुत ही खास है। आज है 10 मई, और 10 मई पर एक हमारा जो भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दिवस यानी कि 1857 का जो प्रथम हमारा स्वतंत्रता दिवस हम आज का मनाते हैं। बहुत गुलामी में जिए, लेकिन कुछ कहते हैं ना, हमारे जो वीर थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें आज आज़ादी दी, उनको हम शत-शत नमन करते हैं।
1: कुल मिला के कहें तो गुलामी की जो जंजीरें थी उसे तोड़ने के लिए हमारे वीर जो क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया था, वह
0: जी,
1: दिन था आज का,
0: आज
1: 10 मई 1857। इसी दिन मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और मंगल पांडे से लेकर झांसी की रानी तक वीरता का परिचय दिया, और तब तक लड़ी जब तक शरीर में श्वास रहा। इसीलिए बोल कहा गया, बुंदेली हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी
0: वाली
1: वाली
0: रानी
1: रानी थी।
0: थी, बिल्कुल। और सिपाहियों को कहते ना, विशेष रूप से पशुओं की चर्बी लगे हुए कारतूस दिए गए थे, तो और ब्रिटिश अधिकारियों के आर्थिक शोषण और अत्याचारों ने देश में इस तरह से असंतोष फैला दिया था, तो इसी वजह से यहाँ पर एक कहते ना क्रांति शुरू हो गई, और ये क्रांति इतनी अच्छी हुई कि आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, और नमन करते हैं अपने उन वीर सपूतों को कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जो आज खुले श्वास हम ले रहे हैं और खुले वतन में हम घूम रहे हैं अच्छे
0: बिल्कुल।
1: से।
0: और यमुना, एक बात और है, 1857 की क्रांति के जो जनक थे वो मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर को उनको श्रेय दिया जाता है। इन्हीं की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ जनता और सैनिकों को एकजुट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी,
1: बिल्कुल,
0: वो बस कहते हैं ना, उनको नमन है हमारा।
1: सभी को नमन करते हैं और इस गीत के माध्यम से अपनी भारत माता को हम प्रणाम करते हैं
0: जी।

0: माँ शब्द की हम बात करते हैं रेनू, और
1: जी
0: आज जो खास दिन है माँ के लिए, मातृ दिवस की हम बात कर लें, और मदर्स डे हर कोई मना रहा है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें इस पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। यह एक शब्द ही नहीं है, अगर देखा जा रही ना तो यह संबंधों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें यह भावनाओं का भावसागर है, और यह संस्कारों का व्यापक कोष है, और यह प्रेम और स्नेह की बैतरणी है जिसके जरिए बच्चे फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। और यमुना जी, इस पर मैंने ना एक कविता भी लिखी है,
0: बिल्कुल।
1: और मैं चाहूंगी मेरे श्रोता सुने और थोड़ी तारीफ भी कर
0: हम भी कर देंगे
1: दें।
0: आपकी तारीफ।
1: बिल्कुल। हर बात पर अंकुश लगाती हो तुम, ये बेटी कह रही है,
0: वाह।
1: हर बात पर अंकुश लगाती हो तुम, घड़ी घड़ी टोकना डांटती फटकारती हो तुम, कब आओगी क्या खाओगी पूछ पूछ कर करती सबको परेशान हो तुम, ना कोई आए समय पर घर तो दरवाजे पर टकटकी लगाए रहा ताकती हो तुम,
0: क्या
1: सीने
0: बात।
1: में छिपे सबके दर्द को बिना कहे ही आंखों से भाप जाती हो तुम, अपनी हर खुशी का हिस्सा अपने बच्चों में बराबर बांट जाती हो
0: क्या
1: तुम
0: बात है।
1: थकी हो, तुम आज रोई हो, तुम परेशान हो, ये किसी ने ना जाना है, पर तुम घर परिवार के डूबते तिनके का सहारा हो, ये मैंने माना है, तेरा टोकना रोकना इसके पीछे छिपे प्यार ममता को ना समझ पाई मैं, कितनी नादान थी तेरी उस डांट में अपनापन ना कदर कर पाई मैं, माँ तूने हर कदमों में चलना सिखाया मुझे, घर परिवार क्या होता है इसका महत्व बताया मुझे, आज हर माँ को हमारा सलाम।
0: सलाम है। और माँ की अगर हम बात कर रहे हैं रेनू, तो माँ सिर्फ एक जन्म देने वाली नहीं होती है,
1: बिल्कुल,
0: माँ सबसे अच्छी मित्र भी होती है। कहते हैं माँ जैसा दोस्त हो तो फिर क्या बात
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: और सबसे पहली गुरु भी होती है। किसी भी बच्चे को अगर देखा जाए तो 6 साल की उम्र तक जो उसका 85% जो होता है वो ज्ञान वो अर्जित हो जाता है, और खास करके किससे होता है, माँ के द्वारा
1: माँ
0: होता है,
1: के द्वारा।
0: अधिकांशता माँ ही देती है। तो गुरु नामेव सर्वशाम माता गुरुत्र स्मृता, अर्थात सभी गुरुओं से माता सर्वश्रेष्ठ गुरु है। माता रूपी इस गुरु की महिमा यह भी है कि आप गोविंद भी दिखाती हैं और दूसरों के अंदर बसी मातृभाव से साक्षात्कार भी कराती हैं। ऐसे उदाहरण कई जगह आप आसानी से देख सकती हो।
1: बिल्कुल। और हर बच्चे से हम यही कहेंगे कि हर वो रूप जो कहते हैं ना, माँ में सब कुछ बसा है, माँ जो सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता, तो माँ के ज्ञान को सर आँखों पर रखें, कभी उनकी बात का बुरा ना माने, वो जो भी कहती है ना आपके भले के लिए ही कहेंगी।
0: बिल्कुल, और भले के लिए कहेंगी, तभी तो हम माँ को, जैसे आपने सलाम की बात की,
1: जी
0: तो माँ के प्रति हमारा भाव भी ऐसा सद्भावपूर्ण बना रहे, और जब वृद्धावस्था आए
1: आए
0: तो ये ख्याल रखें कि उन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलाना
1: चलना सिखाया।
0: सिखाया,
1: बिल्कुल
0: तो आज अगर उन्हें ज़रूरत पड़ रही है हमारी उंगलियों की, तो हम ज़रूर उनका साथ दें। और कभी भी सच कहें रेनू, तो वृद्धा आश्रम में ना भेज करके अगर थोड़ा कष्ट भी आपको हो रहा है तो अपने साथ ही रखिए, और उनके स्वास्थ्य
1: बिल्कुल।
0: का विशेष तौर पर ख्याल रखिए।
1: और एक बात और, समय निकालें, क्योंकि
0: उनसे बातें
1: उनसे
0: करें।
1: बातें करें, आप नहीं जानते कि इस उम्र में जब वो आपका सच्चा साथ चाहती है ना, तो हम नहीं देते, तो बस आपसे यही मैं आपसे विनती करूंगी कि उनको थोड़ा सा समय दें, उनके चेहरे पर देखना प्यारी सी मुस्कान आपके 5 मिनट के समय में ही दे देगी,
0: और बिल्कुल, और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा फल
1: फलेगा।
0: फैलेगा।
1: तो चलिए ये सुनते हैं प्यारा सा नगमा।

0: तो यमुना जी, हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं, अब छोटा सा जीवन लगता है, लेकिन लगता है कि सारे काम कर डालें, है ना, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो अब हम महिलाओं में तो इतने गुण होते हैं कि क्या ही कहें। शुरुआत दिन से करती हैं और शाम तक वो लगी रहती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, कहते हैं इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, लेकिन सब में सब कुछ होता है भाई। अब पेंटिंग की बात करें तो फैब्रिक में पेंटिंग कैसे करते
1: आज मैंने
0: हैं,
1: देखा जो कपड़े पहन के आई हो उसमें दुपट्टे में फैब्रिक पेंटिंग हुआ है
0: बिल्कुल, और ये
1: तो।
0: मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये भी तो किसी ने किया ही होगा।
1: हाँ
0: और टेक्सटाइल डिजाइन हो गया या फैब्रिक पेंटिंग में हम
1: हाँ
0: आगे
1: हाँ
0: कैसे बढ़ सकते हैं, इसी पर हम लेकर आए हैं बातचीत। तो बातचीत है फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋचा प्रकाश, सहायक आचार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से, और
1: और
0: इस
1: इन
0: पे बात कर रही हैं
1: आपकी सखी
0: हाँ आप ही, यानी कि यमुना
1: यमुना
0: देवी।
1: चलिए सुनते हैं।

0: ये बातचीत हम जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले ना हम एक नगमा सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: ए भाई दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं।
1: बिल्कुल, हम सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करते हैं और सड़क सुरक्षा सप्ताह इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। और खास करके हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, खास करके सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए प्रयास किया जाता है कि ऐसा कुछ ना हो आपके जीवन में जो जीवन संकटमय बन जाए, तो ऐसी कोशिश होती है। और खास करके हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर जो 2 वर्ष में नई इसी माह में मई माह में विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, वो भी 8 से 12 मई तक। और इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना होता है, इसका उद्देश्य होता है।
0: बिल्कुल, उसका उद्देश्य जीवन है अनमोल, सुरक्षा है जरूरी। हम सब हैं सड़क सुरक्षा नायक, तो हमें सुरक्षा पर ध्यान देना है, हमें रक्षक बनना है, तेज गति पर लगाम लगाएं और जिम्मेदार नागरिक बने। सुरक्षित सड़कें और सुरक्षा भविष्य, सुखद भविष्य तभी बनेगा जब हम पैदल चलें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों के लिए सड़कों पर सुरक्षित बनना हमारा सामूहिक, कहते हैं ना, दायित्व है। और नियमों का सारा पालन करना चाहिए क्योंकि देखिए जीवन बहुत ही छोटा है। अगर हम इस तरह से अपने जीवन को खराब करेंगे तो ये छोटी छोटी नियमों का पालन अगर हम करें, ट्रैफिक रूल्स निभाएं, तो कितना अच्छा रहे। एक अच्छे सभ्य नागरिक बनना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल का उपयोग ना करें, छोटी सावधानी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। तो इसी पर हम क्यों ना एक नगमा सुन ले।
1: बिल्कुल, और ये बताइए भाई जरा देख के चलो।
0: हाँ
2: ए भाई दर

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चाहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: तो भाई हम जैसे कि बातचीत की बात कर रहे हैं, तो आज हम बातचीत लेकर आए हैं फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र रोजगार की संभावनाएं विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा प्रकाश, सहायक आचार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं जो आज हमारे सहभागी हमारे साथ यमुना देवी।
1: बिल्कुल,
2: हुनर तो हर किसी में किसी न किसी चीज का होता ही है। यदि समय रहते उस हुनर को पहचान लें तो बेहतर स्वरोजगार का अवसर मिल सकता है और आर्थिक रूप से मजबूती भी मिल सकती है। हुनर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दौर में हाथ से बने और यूनिक डिजाइन वाले कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा प्रकाश, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में सहायक आचार्य के तौर पर कार्यरत हैं और फैब्रिक पेंटिंग टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में विशेष ज्ञान रखती हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है ऋचा जी।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले इस क्षेत्र से जुड़ने की अपनी जो यात्रा है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: धन्यवाद और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। मैं डॉक्टर ऋचा प्रकाश, मैं सहायक आचार्य हूँ इग्नू में और मैं टेक्सटाइल की प्रोफेसर हूँ। मेरा जो बचपन में जब मैं मेरी मम्मी को सिलाई मशीन पे काम करते हुए देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो बचपन से ही मुझे खाना बनाने और सिलाई करने का बड़ा शौक था। तो मैं उनकी मशीन लेके बैठ जाती थी और कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिलती रहती थी। वहां से मेरा इस क्षेत्र में जो हुनर है वो मुझे समझ में आया कि शायद मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बड़े होके फिर मैंने होम साइंस में एडमिशन लिया, तो बैचलर डिग्री होती है होम साइंस में, गृह विज्ञान जी, और उसमें पांच अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, मतलब पांच अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिसमें कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें से एक है कपड़ा और वस्त्र विज्ञान का, जिसे कि हम फैब्रिक एंड अपैरल साइंस भी बोलते हैं
2: जी।
3: और वहीं से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और फिर मैंने बीएससी किया, मास्टर्स किया, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की और मैं पिछले करीब करीब 9.5-10 साल से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हूँ
2: जी। तो सबसे पहला प्रश्न, फैब्रिक पेंटिंग या टेक्सटाइल डिजाइन क्या होता है और इसे आमजन की हम बात करें तो जो हमारे श्रोता है तो वो कैसे समझेंगे कि क्या है?
3: देखिए, सबसे पहले ना हम जब कपड़े की बात करते हैं तो सभी को लगता है कि कपड़ा मतलब हम जो पहन रहे हैं वो है कपड़ा, जबकि जो फैब्रिक एंड अपैरल साइंस का जो क्षेत्र है ये तीन बड़े चीजों में डिवाइडेड है। पहला जिसे कि हम टेक्सटाइल कहते हैं, जहां पे धागे, रेशे, इन सब का जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसके बारे में हम जानते हैं
2: जी।
3: जब थान में कपड़ा बन चुका होता है उसके बाद जो थान वाला कपड़ा होता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। तो वो खुला कपड़ा होता है, उस पे सिलाई नहीं हुई होती है, किसी तरह के फिनिशिंग नहीं दिया गया होता है, तो वो फैब्रिक हो गया। और जो अपैरल होता है, जो कि हम बहुत ही आसान शब्दों में हम उसे कपड़ा बोल देते हैं, बट किसी कॉमन इंसान के लिए कपड़ा कुछ भी हो सकता है। तो जब एक कपड़ा कटता है और उसके ऊपर सिलाई मारी जाती है, वो एक पहनने वाले वस्त्र में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम फिर क्लोदिंग या अपैरल या वस्त्र बोलते हैं
2: जी।
3: तो ये तीन फील्ड्स हैं जिसे कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने बात

0: या फैब्रिक पेंटिंग की
1: जी।
0: तो फैब्रिक पेंटिंग वो हुआ कि कपड़ा जब थान के स्टेज में होता है या उसे हम कट करके काट के सिलाई कर चुके होते हैं
1: जी।
0: तो उसे हम और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। हम उसे बुनाई से सुंदर बना सकते हैं, कढ़ाई से बना सकते हैं, अलग अलग तरह की सिलाई करके बना सकते हैं, और उनमें से एक तरीका या टेक्निक है जिसे कि हम पेंटिंग भी कहते हैं। तो अलग अलग तरह के पेंट्स आते हैं। पहली तो बात, पहले मुझे याद है पुराने जमाने में जब हम बचपन में थे तो हमारे पास वो पोस्टर कलर या वाटर कलर होते, लेकिन वो कपड़े पे नहीं चढ़ते हैं, वो एक बार की धुलाई में निकल जाएंगे। आज आप देखिए इंग्लिश में उसे पिगमेंट कलर्स बोलते हैं या हम डाई भी बोलते हैं। हिंदी में सब रंग ही होता है बट इंग्लिश में थोड़े से डिविजन अलग हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक तरह का गोंद होता है जो कि इसे कपड़े से फाइबर के एकदम अंदर के लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक वो घुसता है और उसे कपड़े से बांध के रखता है। तो आप उसके ऊपर जब एक बार वो रंग सूख जाए तो आप उसे कितनी भी बार धो दें वो निकलता नहीं है। तो इसे हम फैब्रिक पेंटिंग कहते हैं और इसमें बहुत तरह के टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रंग लेके और कोई डिजाइन एक फूल बना के उसे चित्र बना के आपने कलर कर दिया, भर दिया तो वो फैब्रिक पेंटिंग हो गई। नहीं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। एक चीज होती है मॉर्डेंट, जैसे कि एलम होता है जिसे हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। आप अगर कोई भी रंग वाले कपड़े को फिटकरी में डुबा के थोड़ी देर सादे पानी में उबाल देंगे तो वो रंग पक्का हो जाता है, फिर वो रंग निकलता नहीं है। तो वो इंग्लिश में एक तरह का हम उसे मॉर्डेंट बोलते हैं। तो फैब्रिक पेंटिंग के लिए भी ये सारी चीजें कपड़े पे देना और फिर पेंट करना उसे बहुत जरूरी होता है।
1: फैब्रिक पेंटिंग में अगर आगे बढ़ने की हम बात करें तो इसके लिए कौन कौन सी योग्यता या काबिलियत क्या होनी चाहिए?
0: जी देखिए, अगर आप सिर्फ फैब्रिक पेंटिंग की बात कर रही हैं तो सच तो ये है कि इसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका हाथ बैठा हुआ है, आप अच्छा आउटलाइन बना सकते हैं, चित्रकारिता कर सकते हैं और उसके अंदर आप कलर भर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अपना एक रोजगार शुरू करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें एक करियर बनाऊं अपना, तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए फैब्रिक पेंटिंग के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज कपड़े का होना चाहिए और थोड़ा सा रंगों का। तो बैचलर्स डिग्री है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है। अब जैसे सर्टिफिकेट होता है एक साल का हो गया है अब तो, या डिप्लोमा कोर्सेज दो साल के हो गए हैं, बैचलर डिग्री तीन से चार साल की है, और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो एक या दो साल लगता है। डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सी डिग्री कितने टाइम की हुई है। ग्रामीण महिलाओं के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आप ड्रॉइंग में अच्छी हैं, कलरिंग में अच्छी हैं, इस फील्ड में जा सकती हैं, फैब्रिक पेंटिंग कर सकती हैं। आपके घर में कपड़ा है, आपको पता है कि सूती कपड़ा कौन सा है, आपको पता है रेशम का क्या है, आपको पता है कि सिंथेटिक कौन सा है, आप बस इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस आजकल मार्केट में कपड़े के ऊपर चढ़ने वाले बहुत कलर्स अवेलेबल हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं, और मार्केट में फेविक्रिल कलर्स अवेलेबल हो, तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक गोंद जैसा सब्सटेंस होता है, तो ये जब आप कपड़े पे अप्लाई करते हैं तो वो निकलता नहीं है। तो इस तरह के आप कलर्स ले आइए, थोड़े से आप ब्रश ले लीजिए कलर करने के लिए, और फिर उसके बाद आप घर पे बैठे ही आप फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं।
1: शुरुआती दौर के समय में कितनी लागत से इसे शुरू की जा सकती है, जैसे बजट की हम बात करें?
0: जी जी,
1: कितना लग सकता है शुरुआती दौर में?
0: देखिए अगर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप ये चीज बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसे बाजार में बेचना चाहते हैं तो आप एक दो कपड़े से तो शुरुआत नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें बल्क में चीजें चाहिए होती हैं, तो आप 50 या 100 पीसेस तो टारगेट करेंगे ही। तो आपके पास जो सबसे कम लागत में आप ये काम शुरू कर सकते हैं वो 10,000 के आसपास आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप सूती साड़ियां एक रंग की या अलग अलग रंगों की, बिल्कुल प्लेन सूती साड़ियां बॉर्डर वाली आप खरीद लीजिए और उसके ऊपर आप डिजाइन बनाइए और उसे अलग अलग रंगों से भर दीजिए कलर करके, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप 10,000 की लागत में अपने रंगों को और ब्रशेस को और साथ में कपड़ा, ये सारी चीजें आपको इतने में आ जाएगा और 50 पीस तो आराम से आपका निकल जाएगा।
1: आज सोशल मीडिया का देख लीजिए जमाना है और ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे में ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है किस तरीके से सहायता कर सकता है इसमें?
0: जी ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो ऑनलाइन इतना कि मतलब स्मार्टफोन हाथ में जरूर होता है। अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप जाइए तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाइए और उसे वहां पे फोटो खींच के आप एक प्रोफाइल बना लीजिए, बिजनेस प्रोफाइल, और आप उस पे अपने फोटोज अपलोड

0: करते रहिए और जितना हो सके आप उसे फैलाने की कोशिश करिए, शेयर करिए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों की नज़र पड़ती है। और क्योंकि हाथ का काम आजकल बहुत मैं कहूँगी एक्सपेंसिव महंगा होता जा रहा है, क्योंकि मशीन ने ले लिया है हाथ के काम को, ओवरकम कर लिया है, तो मशीन का काम तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो हैंडलूम का होता है, जैसे हमारे जो कारीगर हैं जो हाथ से बुनाई कर रहे हैं या यू नो कढ़ाई कर रहे हैं या जो फैब्रिक पेंटिंग हो रही है,
1: उसकी बात ही अलग,
0: उसकी बात ही अलग है, उसकी अलग लुक आता है और उसकी अहमियत भी बहुत अलग है। तो मैं तो कहूंगी कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा और एक बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म बनेगा आप लोगों के लिए।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने भी कोर्स की बात, कौन सा कोर्स कर सकती हैं?
0: जी देखिए, फैब्रिक पेंटिंग के लिए अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, इस तरह के अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स, मतलब अलग अलग नाम से अलग अलग विश्वविद्यालयों में कोर्सेज चल रहे हैं। टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग के नाम से चल रहा है, क्लोदिंग एंड अपैरल के नाम से है, क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल्स के नाम से है, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के नाम से है, और फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी से भी है। और क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग एक बहुत बेसिक चीज है तो ये सभी कोर्सेज में सिखाया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डिस्टेंस एजुकेशन की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कि फेस टू फेस, मतलब सामने बैठ के टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन घर बैठे आपके घर पे बुक्स पहुंच जाएंगी। तो इस तरह के काफी सारे कोर्सेज हैं।
1: तो सरकार द्वारा क्या कुछ सहायता दी जा रही है इस क्षेत्र को लेकर के?
0: देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स हैं जो इसमें चल रहे हैं, जो कि ग्रामीण महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। जैसे कि एक है सिल्क सामग्र एंड वुल डेवलपमेंट, तो ये सिल्क और ऊन का काम अगर आप करना चाहें तो आप इसमें आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक रॉ मटेरियल्स, और इसमें आप अपना काम कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जैसे समर्थ की एक स्कीम है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा है, मतलब फाइबर और यान, धागे, रेशे, ये सब में ज्यादा काम करती है। इसी के साथ साथ और बहुत सारी हैं, जैसे कि एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है
1: जी।
0: प्लस उनका एक चीज, जैसे कि आसाम का एक गांव है जिसे कि स्वालकुची कहा जाता है, वो पूरा का पूरा रेशम के धागों पे काम करता है, वहीं पे वो सिल्क बनाते हैं, वहीं पे उसे रंग किया जाता है, वहीं पे उसकी बुनाई होती है, सब कुछ। तो इस तरह से स्कीम्स तो खैर काफी ज्यादा है।
1: बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप में?
0: जी, मैं यही कहूंगी कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, आप सभी को देखिए, फैब्रिक पेंटिंग, टेक्सटाइल, फैशन की जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक बहुत ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र है, और आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाएं, आप को कपड़े की जरूरत तो पड़नी ही है, तो इसका नॉलेज होना, बेसिक भी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये बहुत अच्छा होगा। प्लस बहुत आसानी से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं रेशे के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं, सूती क्या होता है, रेशम क्या होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे किस चीज को पहचानना है।
1: डॉक्टर ऋचा प्रकाश जी, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिल्ली में सहायक आचार्य के तौर पर कार्यरत हैं, आपने फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हमें जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कहते हैं ना, फैब्रिक की जो इम्पोर्टेंस थी वो किस तरह से हम महत्व रखता है जीवन में और हम कैसे रोजगार को बढ़ा सकते हैं, तो इसी पर हमने अभी बातचीत सुनी, फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़ा सकते हैं, जो विशेषज्ञ थे डॉक्टर ऋचा प्रकाश, जो कि सहायक आचार्य थे इग्नू दिल्ली से, और बातचीत कर रहे थे यमुना देवी हमारे सहपाठी।
1: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि अगर जीवन जीना है तो थोड़ा सा सकारात्मक होकर के जिए, और जो मिलता है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा तलाश करें, अपने हुनर के दम पे कुछ आगे बढ़ें, और जीवन को जीना है तो थोड़ा खुशी खुशी ना जी लें।

0: कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जीवन में करना ही होता है, और खास
1: बिल्कुल
0: करके आज हम वीरांगना क्रम की बात करें तो रीनू क्या करने जा रहे हैं, वीरांगना क्रम में आज हम किसको ले रहे हैं,
1: आज आ रहे हैं, आपको
0: बात
1: नहीं
0: कर रहे
1: पता।
0: हैं?
1: आज हम लेकर आए हैं झलकारी बाई को, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक निर्भीक महिला योद्धा थी, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल का नेतृत्व किया। और कहते हैं कि वे रानी की हमशक्ल थी, और झांसी के युद्ध में अंग्रेजों को धोखा देने के लिए उन्होंने रानी के वेश में लड़ते हुए अद्भुत वीरता दिखाई थी।
0: क्या बात है। तो थोड़ी सी बात हम भी बता दीजिए, मुझे
1: बिल्कुल
0: याद है थोड़ा सा कि इनका बचपन जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक साधारण जो एक निषाद परिवार होता है उसमें हुआ था, और बचपन में ही माता का देहांत होने के बाद उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी और हथियार चलाने जैसे तलवारबाजी है, निशानेबाजी है, पहले ऐसा होता था, प्रशिक्षित किया
1: बिल्कुल
0: जाता था बालिकाओं को भी। और देखा जाए तो झलकारी बाई का चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता था, वे न केवल रानी की सेविका थी बल्कि दुर्गा दल की एक प्रमुख सिपाही भी थी।
1: बिल्कुल। और कहते हैं अंग्रेजों ने झांसी के किले को पूरा घेर लिया था, तब झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया, जिससे रानी को किले से सुरक्षित बाहर निकालने का मौका मिल सका। तो कहते हैं, कहा जाता है ना कि अंत तक अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को वो प्राप्त हुई, और उन्हें झांसी की परछाई और बुलेंदखंड की शान के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और यह पंक्ति कहना अनुचित ना होगा कि जाकर रण में ललकारी थी वो तो झांसी की झलकारी थी, और इन पंक्तियों को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। तो ऐसे वीर योद्धाओं को हमारी
1: हमारा
0: जो
1: शत शत
0: शत
1: नमन।
0: शत नमन है, और हम यही कहते हैं कि उन्होंने जो हमें आज़ादी दी हम उसका सदुपयोग करें और
1: बिल्कुल
0: आगे सीख लें अपने जीवन में।

0: अपने कार्यक्रम में हम समय समय पर इस बात की भी जानकारी देते हैं कि योजनाओं के अंतर्गत हम आपको क्या बताने वाले हैं।
1: बिल्कुल। और आज जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, जब कन्या पैदा होती है तो बहुत चिंताएं भी पैदा हो जाती है। हम पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, लेकिन इसके लिए सरकार ने हमारे सुकन्या समृद्धि योजना, जो एक लघु बचत योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, एक पहल के अंतर्गत बालिका के आर्थिक कल्याण के लिए बनाई गई है। इसमें उचित बचत ब्याज दर होती है, कर लाभ भी मिलता है और 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि प्रदान की जाती है, जिससे माता पिता 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए प्रति वर्ष सिर्फ 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं
0: हाँ, शुरुआत हुई
1: और
0: है।
1: 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते
0: मतलब
1: हैं।
0: ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक का कर सकते हो।
1: बिल्कुल।
0: और जो 10 वर्ष की हम बात कर रहे हैं कि 10 वर्ष के कम आयु की बच्ची की बात, तो जब जन्म लेती है
1: हाँ,
0: तभी से आप अगर
1: तभी
0: शुरू
1: से
0: करवा
1: शुरू।
0: देते हैं तो उसके बड़े होने तक आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, समय पे मिल जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए जैसे कन्या जन्म ले आप उसका सुकन्या समृद्धि के तहत खाता खुलवा दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां हैं वो 2 बच्चियों तक आपको इसका लाभ मिलेगा। मतलब आपकी 2 बेटी तक का हो सकता है सुकन्या समृद्धि का आप लाभ पा सकते हैं, 3री बेटी पर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अलग से कुछ कर सकते
1: कर
0: हैं आप
1: सकते हैं।
0: व्यवस्था।
1: हाँ।
0: और दूसरी बात, जैसे आपने ब्याज दर की बात की, तो जो अन्य जगह हम कोई जमा राशि करते हैं तो वहां पे ब्याज उतना ज्यादा नहीं मिलता,
1: पर ये
0: लेकिन ये
1: सबसे
0: सुकन्या
1: ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा
1: हाँ
0: इसमें देते हैं, खास करके ये बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए है ये।
1: बिल्कुल।
0: और ये जो खाता खोलते हैं, खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इस पैसे को जमा करना होता है। और जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको, तो बिटिया का जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र होता है, आधार कार्ड अगर बना है तो उसका आधार कार्ड, नहीं तो जो माता पिता है
1: माता
0: उनका
1: पिता
0: आधार
1: के
0: कार्ड,
1: नाम
0: उनका
1: पर।
0: आधार
1: हाँ,
0: कार्ड, यही इतना लगता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। और इस खाते को अगर आप खुलवाते हैं तो
1: तो पोस्ट ऑफिस
0: 21
1: में ये बहुत
0: हाँ
1: आसानी से खुल जाता
0: हाँ
1: है।
0: जमा करना होगा 15 साल तक,
1: जी
0: लेकिन जब मेच्योरिटी 21 साल पूरे होने पर या बेटी के 18 साल की आयु के बाद विवाह होने पर मेच्योरिटी पर ये प्राप्त हो सकता है।
1: और देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको
0: हाँ,
1: मिली। तो
0: एक बात और है रेनू, मैं
1: हाँ
0: ध्यान में आ गया कि जो इनकम टैक्स होता है ना, आयकर की
1: हाँ
0: धारा 80C के तहत इसमें जो जमा राशि और टैक्स में छूट भी मिलती है,
1: मिलती
0: तो ये
1: है।
0: धनराशि आप
1: बिल्कुल
0: यहाँ जमा करके लाभ पा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और साथ साथ ये भी कहेंगे

0: कि अगर पैसा आपके पास ज्यादा है,
1: पैसा।
0: पैसा है तो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो गुरूर करने की जरूरत नहीं है,
1: और
0: थोड़ा
1: महिलाएं तो हमारे हमेशा पैसे की बचत कर ही लेती हैं,
0: तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे पे गुरूर भी
1: गुरूर
0: करने
1: भी
0: की
1: नहीं
0: जरूरत नहीं करनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: है।
2: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने बहुमूल्य सुझाव इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 1100

0: अगर सब कुछ।
1: आप हमें ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
2: आपको ये भी बता दें कि जो हमारा ये कार्यक्रम है गृहलक्ष्मी, इसके अलावा भी हमारा कार्यक्रम शाम को जाता है लोकरंजनी 5:10 से लेकर 5:30 तक, और ग्राम संसार कार्यक्रम 6:30 से 7 तक, और हमारा जो कृषि जगत कार्यक्रम है वो 7:05 से 7:30 तक, इसको भी आप सुन सकते हैं।
1: और इसी के साथ आज हमारा गृहलक्ष्मी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार परासर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को हमारा
2: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4

0: लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions, and takes the country forward.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
2: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Kadagam or TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member House. According to a Lok Bhavan press release, the governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay in a social media post. Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: Yeah. आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

अरे जनाब, आपने पुकारा नहीं लेकिन फिर भी हम हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर एक ही फिल्म से। और मैं हूं आपका आरडी यानी रेडियो दोस्त, एडी यानी अरुणेश द्विवेदी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के

0: प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुलैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले।

0: आकाशवाणी समाचार गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने 1 दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विंस से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और यह रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार।

कलाकार कौन है? जी नहीं, जगजीत सिंह साहब बिल्कुल नहीं है, जिनकी मखमली आवाज में आप ये खूबसूरत गजल सुन रहे हैं। दरअसल आज के हमारे कलाकार हैं इस गजल को लिखने वाले, जिनकी जादुई कलम से इस गजल के बोल लिखे गए हैं, कैफी आजमी साहब। उनके बारे में बहुत सारी करेंगे बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी, कुछ कही कुछ अनकही। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही।

कैफी आजमी साहब का असली नाम था अख्तर हुसैन रिजवी और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 को हुआ था।

दोस्तों, अभी आपने अर्थ फिल्म से जगजीत सिंह साहब की जादुई आवाज़ में जो ये गज़ल सुनी, झुकी झुकी सी नज़र, इस गज़ल को लिखने वाले थे कैफ़ी आज़मी साहब। और आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज 10 मई है और 10 मई 2002 को ही कैफ़ी आज़मी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम उनकी पुण्य तिथि मना रहे हैं। और कैफ़ी आज़मी साहब के बारे में बात करें तो इनका जो झुकाव था वो युवावस्था से ही, बल्कि यूं कह लें 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी थी। और इसके साथ जैसे जैसे वे बड़े होते गए, किशोर होते गए, युवा होते गए, और 1936 में साम्यवादी विचारधारा से वे प्रभावित हुए, और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी लेखनी को आवाज़ दी और जो साहित्य के प्रति उनका प्रेम था वो आकर उनकी गज़लों में दिखाई देता है। और 1943 में साम्यवादी दल ने अपना जब मुंबई ऑफिस, यानी उस ज़माने में बॉम्बे कहा जाता था, अपना बॉम्बे कार्यालय शुरू किया तो कैफ़ी आज़मी साहब को आज़मगढ़ से बॉम्बे भेजा। और वहाँ आकर उन्होंने उर्दू जर्नल मजदूर मोहल्ला का संपादन भी किया। और इसके बाद किस तरह से उनकी जीवन में, उनके करियर में उतार चढ़ाव आए, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आगे बढ़ने से पहले एक और बेहद ही प्यारा सा नगमा लता जी की आवाज़ में आपको सुनाते हैं, और इसको भी लिखा है कैफ़ी आज़मी साहब ने।

और इसी के साथ आपके संदेश, आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और ये एक मैसेज आया है मारहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन शहनाज और नवेद हसन का। और इन्होंने लिखा है कि कैफी आज़मी साहब के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है, और उनके द्वारा जो आप लिखे गए गज़लें सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, वो भी बेहद पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

दोस्तों, बात हो रही है आज कैफ़े आज़मी साहब की। और अगर इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो 1947 में इनका निकाह शौकत से हुआ और इनकी शरीक हयात यानी शौकत आर्थिक रूप से बेहद संपन्न थी और साहित्यिक संस्कारों वाली थी और उनकी भी साहित्य में रुचि थी और कैफी साहब के लेखन से वे बेहद प्रभावित हुई थी। और इसी के बाद उन लोगों ने आपस में विवाह कर लिया और जानी मानी अभिनेत्री शबाना आज़मी, कैफी आज़मी और शौकत की बेटी हैं और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम बाबा है। और वहीं पर अगर हम बात करें उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में तो आवारा सजदे, इंकार, आखिरी शब, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दिल को छू जाने वाली गज़लें भी लिखी हैं तो गाने भी लिखे हैं हिंदी फिल्मों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और कैफ़ी आज़मी साहब के द्वारा लिखे गए इस गाने को आपको सुनाते हैं। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा।

और इसी बीच आपके संदेश भी लगातार हमारे पास तक आ रहे हैं, और ये एक मैसेज आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, और कैथल हरियाणा से भी एक मैसेज आया है मधु नायक का, और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, और साथ ही में जो आप कैफी आजमी साहब के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही मार्मिक गज़लें लिखी हैं जिन्हें आप सुनवा रहे हैं। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको कैफी आजमी के साहब के बारे में अगर कुछ और बातें बताएं तो आपको मालूम है कि कैफी आजमी साहब को नेशनल अवार्ड तो मिला ही है, साथ ही में कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। वहीं 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वहीं अगर यूपी सरकार की बात करें, क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, तो यूपी सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित किया है, और उनकी भावुक और रोमांटिक शायरी बेहद ही प्रभावी लेखनी से आगे बढ़ी है। वे सिर्फ एक गीतकार ही नहीं थे बल्कि पट कथाकार के रूप में भी स्थापित हुए। हीर रांझा कैफी साहब की सिनेमाई कविता कही जा सकती है। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले कैफी आजमी साहब बेहद ही हंसमुख थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि वक्त वक्त की बात है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।

दोस्तों, आपने देखा, इस गाने को सुनकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कितने ही भावुक और संवेदनशील लेखक थे, गज़ल लिखते थे या गाने लिखते थे। कैफ़ी आज़मी साहब का दिल बेहद ही बड़ा था और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी शानदार एक से बढ़कर एक गज़लें लिखी हैं और गीत भी लिखे हैं। ऐसा ही एक गाना है जो कि 1968 में आई फिल्म अनोखी रात से है, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और गाने के बोल हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। आइए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा दिल को छू जाने वाला गाना।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ, और आज बात हम कर रहे हैं कैफी आजमी साहब की। यूं तो बहुत ही एक से बढ़कर एक, जैसे चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, और या फिर उन्होंने गीत हो या गज़ल हो या शायरी हो, मतलब आप ये मान के चलिए कि कैफी आजमी साहब साहित्य जगत के सूर्य हैं, और उनकी रचनाओं का प्रकाश हम सब के ऊपर है और हम सब उन्हें बेहद पसंद करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक गज़ल लिखी, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, आज सोचा तो आंसू भर आए। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, पत्थर के खुदा वहां भी पाए, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। ऐसे कितने ही बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्यारे से, दिल को भा जाने वाले, छू जाने वाले उन्होंने गजलें लिखी हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ गजल ही लिखी हो, उन्होंने देशभक्ति से ओत प्रोत गाने भी लिखे हैं। तो अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, और आपको छोड़े जा रहे हैं कैफी आजमी साहब के द्वारा लिखे गए इस देशभक्ति गाने के साथ। जल्द होगी आपसे मुलाकात,

अभी आप एक ही कलाकार इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अरुणीश कुमार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारा जो ब्रज को लोक जीवन है ना, हर बात के काजे कछु न कछु कहावतें, कछु न कछु रचना रची गई है। पर ही हमारा जो जेठ को महीना है ना, याके काजे भी कहावत है भली दोपहरी जेठ की।
1: चंपा जी, ये जेठ की दोपहरी जो इतनी तपे है, वाकू भली क्यों कहो गयो है?
0: नृत्य गोपाल जी देखो, एक तो ये है कि खेती बाड़ी को काम कम है गयो है, हैं?
1: हाँ?
0: कोट कोठीला अन धनते हमारे ग्रामीण भैयान के, हमारे किसान भैयान के भरजा में हैं, शहरीकरण ते दूर हैं, थोड़ी बहुत सुविधा कम हो सके, पर वहां पे ना प्रकृति को जो साहचर्य है, प्रकृति को जो सामिप्य है, वो प्रचुर मात्रा में है।
1: जी हाँ चंपा जी, एक तो प्रकृति को साहचर्य में बहुत ज्यादा है, और आपको एक बात और बता मैं, या को एक महत्व तो ऐसे हूँ है सामाजिक संरचना के ताई, ये जो जेठ को महीना है ये सबते बढ़िया काम करे।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, सबसे बढ़िया बात ये है कि ब्रज के गामन में कोई भी ऐसा घरांगन ना मिले वो कि जहाँ में नीम को, बरगद को, पीपल को, ऐसे जो सघन छाया वाले वृक्ष है ना, विशाल वृक्ष ये ना होंगे। और खेत खलिहान है उनके तो कहने ही का, वहां तो प्रचुरता है ही है इनकी।
1: चंपा जी देखो, प्रत्येक चौपाल पे या बैठकन पे या समय 10-5 इकट्ठे है के भैया बैठ जाए,
0: हाँ,
1: तो वे अच्छी अच्छी बात करें कि भविष्य में कहा हमें करना है या के ऊपर बड़ी बढ़िया चर्चा है जाए।
0: जेठ मास के काजे कहो गए होगा कि भले ही दोपहरी जेठ की, चिलचिलाती धूप भले ही जेठ मास की है, बाकू भली दोपहरी यो कहो गए हो, खूब लू चल रही है, खूब गर्म हवा के झोंका चल रहे हैं, पर फिर भी वहां पे छाया की प्रचुरता है, उपलब्धता

0: और चाहे थोड़ा सा ये ठंडे ठंडे पेड़न ते निकलती वही हवान के झोंका है। और देखो पीपे के काजे पतरी पतरी सी छाछ है, महेरी है, तो फिर तो भैया बात बन ही जाएगी।
1: और चंपा जी एक चीज है, मत भूलो
0: हाँ
1: आप तनिक ये तो देखो कि प्रत्येक आंगन छोटे छोटे बालकन ते या समय ऐसे आनंदित है रहे होए, क्योंकि सब कोई अपनी दादी के घर जाए, कोई अपनी नानी के घर जाए, कोई मौसी के घर गए हो, तो कोई भुआ के घर गए हो, सब एक दूसरे के यहाँ पे जाए आमे। तो ये जो जेठ मास है ना, या में छुट्टी है जाए बालकन की, तो घर आंगन महक रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और याकी का जय तो हमारे ब्रज में खूब कहो ही गयो है। नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, पर नृत्य गोपाल जी दूध मलाई तो एक खावे की बात है भाई, जो ताकत हमारे शरीर को प्रदान करे है, पर छाछ और दही को सेवन भी तो खूब बालक कर रहे हैं। और यह छाछ के काज है तो हमारो कन्हैया नाचो हो।
1: ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा में, ये तो प्रसिद्ध उक्ति है।
0: रस खान की, और
1: हाँ
0: देखो नृत्य गोपाल जी यही ब्रज की छाछ में लोक मंगल की कितनी बड़ी भावना छिपी हुई है।
1: ये छाछ के पेवैया ने 76 पति मारे है, ऐसो मानो जाए कन्हैया ने छाछ पी के कंस पछाड़ दियो।
0: और नृत्य गोपाल जी जेठ मास के महीना में थोड़ी बहुत छाछ धरी रह गई, गर्म सी है गई तो खटास ने आ जाए। याके काजे बड़ी बढ़िया कहावत है, कोई अपनी छाछ को खट्टी ना बतावे, सबके बड़ी मीठी है, बड़ी स्वाद है।
1: देखो ना, तो कोई अपने बेरन ने खट्टे बतावे, ना कोई अपनी छाछे खट्टी
0: हाँ
1: बतावे।
0: ये तो नृत्य गोपाल जी वही बात कर दई कि भैया दूधा उधौरो है और छाछाऊ
1: दोहरी
0: धौरी है।
1: है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे ये मनभावन सो लोकगीत। और चंपा जी, आपको एक चीज और याद दिला दें हम कि जो जेठ की दोपहरी है ना, या जेठ की दोपहरी में लोक गायन और लोक के जो लोक नाट्य है, इन दोनों को बढ़िया प्रदर्शन हुए।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, सही कह रहे हो।
0: हाँ, क्योंकि कहूँ चौपार पे बैठक पे बैठ के जो गावो है ना वो सीखे और यही में अभिनय कला को ही विकास है जाए।
1: तो नृत्य गोपाल जी, रोचक चर्चा हो यही, और अपने श्रोता भैया बहनान को ले चले।
0: हाँ चंपा, ले चले। और आज अपने श्रोतान को सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है ब्रज की रास लीला में नए आयाम, या विषय पे चर्चा के ताई हमारे स्टूडियो में है चंद्र प्रताप सिंह से करवार जी, और उनसे बात कर रही हैं चंपा जी।
1: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में चंद्र प्रताप सिंह से करवार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
2: चंपा जी, आपने बुलायो, सब भैया बहन को मेरो नमस्कार है। और आपने जा स्टूडियो में आज मुझे बातचीत एक आज बुलायो, जे मुझे बड़ी प्रसन्नता है।
1: सिकरवार जी, देखो जो लोक नाट्य विधा है रासलीला हमारे ब्रज की, हम देखे हैं कि पुरातन ते लेके आज तक की परंपरा अनवरत रूप से जारी है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता भैया बहनान के काजे या बात को बताओ कि ब्रज की जो रासलीला है कहा है, और या को मूल अर्थ और स्वरूप कहा है और कैसे हो है?
2: ये चंपा जी, बहुत अच्छा सवाल करे आपने। जो ब्रज की एक जो पहचान है
1: जी,
2: वो रासलीला थे, ये पुरातन काल से चली आ रही है, यानी भगवान श्री कृष्ण की स्थली है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ बचपन में रहे, बचपन में रहे तो खेल करे कूदे, और उन्होंने कैसे कैसे रास रचाया वही एक रासलीला है।
1: यानी कि जो उनकी भक्ति है या उनकी जो लीलान को आनंद है वाको नाट्य रूपांतर,
2: नाट्य रूपांतर रासलीला है। ब्रज की रासलीला भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम भक्ति और लीलन को एक तरीका से नाट्य रूपांतरण है। को अर्थ है आनंद रस और दिव्य संयोग।
1: हाँ।
2: और लीला को अर्थ है ईश्वर की क्रीड़ा, यानी कृष्ण भगवान ने जो खेल कूद करेगा।
1: मतलब ये है ऐसे करवार जी कि केवल ये नाट्य ही ना है, भक्ति साधना को माध्यम है।
2: हाँ, बिल्कुल,
1: है ना
2: बिल्कुल।
1: तो यहाँ में जो संगीत को समावेश का तरीका ते है
2: ऐसा है कि जैसे जो भक्ति साधना है हमारी, जैसे हम भागवत कराएं या फिर हम कोई मंचन करावे काऊ लीला को, तो हम निश्चित तरीके से संगीत उगावे को, नृत्य उगावे हो, संवाद उगावे, पद गायन आवे। तो जाम क्या रासलीला में सभी चीज आमे, एक तरीके से अभिनव आवे भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपी को, और बीच बीच अम्बा को संगीत चले जो पद गाए जाए, जो हमारे पुराण पद है, और वहां में संवाद हुए जैसे राधा और कृष्ण को और मनसुखा को, रासाचार्य जो है पद गायन करें।
1: शिकरवार जी, यही क्रम में आप ये बताओ कि जो ये

0: असली ला है या को जो प्राचीन उल्लेख है या और भी कछु हमें बताओ।
1: हाँ बिल्कुल, जे जो है रासलीला को प्रादुर्भाव जो भयो का है
0: जी,
1: वो रास पंचाध्यायी अध्याय जे भागवत महापुराण में आवे दसम स्कंद में
0: जी।
1: और बाके जो अध्याय 29 से लेके 33 तक रास कोई वर्णन है वहां में।
0: तो रास पंचाध्यायी के अलावा या रासलीला विधा को कहीं और

0: दिव्य रास करो या ब्रजभूमि पे।
1: और यही परंपरा को जो भक्ति की परंपरा है यही को नाट्य रूप रासलीला कहाई। बहुत सुंदर बात आपने ऐसे करवाड़ जी बताई है हमारे श्रोता भैया बहनान को। तो जो ये रासलीला है ये एक तरह को सारी सृष्टि के काज है, आध्यात्मिक संदेश है।
0: हाँ चंपा जी बहुत अच्छा सवाल हुआ आपको। रासलीला को मूल संदेश हमें ये समझे कि आत्मा परमात्मा और जीवात्मा को मिलनु कहो जाए।
1: जी
0: जैसे गोपी न को बताया जाए हमारे पुराण में जी हम सुनवे हुआ है
1: पौराणिक मान्यता
0: पौराणिक मान्यता जीवात्मा वो हमारी गोपी जो है जीवात्मा का प्रतीक है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है।
1: जी, जी।
0: तो जिन दोनों के मिलन जो है जैसा को महापुराण भागवत महापुराण में कहे हुए है ये एक लौकिक प्रेम ना है बल्कि अलौकिक एक निष्काम भक्ति का प्रतीक है। जहाँ भक्त पूरी तरह समर्पित है कि ईश्वर में लीन है कि वह लीला देखे। जैसे हम लोग भागवत करावे तो भागवत को एक आनंद दूसरों को सुनवे को जी देखवे को हुआ सुनवे
1: हाँ,
0: को
1: हुआ। बहुत सुंदर। तो शिकरवार जी देखो जो ये रासलीला की परंपरा अनवरत रूप से वैसे तो चली आ रही है पर फिर भी ये बात कई बार दिमाग में आवे है मन में आवे है जो विधा है रासलीला की या को विकास कब थे और कैसे हुओ थोड़ो या और कछु बता दो।
0: हाँ जी बात बिल्कुल सब श्रोतनों जानना चाहिए कि जो ब्रज की जो रासलीला है बाकी परंपरा 15वीं 16वीं शताब्दी से शुरू हुई है।
1: जी
0: बा जमाने में आप मालूम है वो भक्ति आंदोलन
1: हाँ, हाँ।
0: भक्ति आंदोलन के समय जैसे यहाँ वल्लभाचार्य जी ने जगह जगह ब्रज 84 कुछ
1: चैतन्य महाप्रभु ने
0: चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए और उन्होंने कृष्ण भक्ति की जन जागरण करो कृष्ण भक्ति के बारे में बताया और कैसे भगवान कृष्ण तो लीला के रूप में
1: तो शिकरवार जी चाहे श्री कृष्ण की भूमिका हो या राधा की हो या गोप ग्वालन की हो सब में बाल कलाकार ही प्रमुख रूप से भूमिका को निर्वाह कर रहे हैं।
0: हाँ जी हमारे यहाँ जी परंपरा रही है खासकर बालक वो उन्हें जो है मंचन की जो है एक कला सिखाई जाए कि भगवान कृष्ण बनो है और उन्हीं में से राधिका बने और उन्हीं में से मनसुखा बने उन्हीं में से जो है उद्धव बने।
1: तो शिकरवार जी जो ये रासलीला है हैं?
0: जी
1: तो या के बारे में कई बार आवे के कौन सी रासलीलाएं क्या प्रकार की हैं कौन कौन सी हैं कई बार रासलीला को कोई नाम हो अपने आप में होवे है कि अरे भैया मां तो आज जरूर चलेंगे या रासलीला को मंचन होएगो तो या के बारे में भी हमारे श्रोता भैया बहनान को बताओ क्योंकि विषय तो बहुत ही रोचक है।
0: मैं बताऊं देखो वृंदावन में हम बचपन में देखे जाओ करते हैं अपने माता जी पिताजी के संग तो बहुत रासलीला हुआ करते
1: हैं बड़े रासमंडल
0: है तो वो तो हुए एक रासलीला जो दिन में हुए
1: जी
0: और वो जो जगह जगह जैसे मान लो आज हमें जो है कालिया मर्दन लीला है गई
1: जी,
0: जैसे मोदरिया चोरी है गई जैसे भ्रमर गीत है वो
1: जी,
0: लीला
1: जी,
0: के रूप हैं लीला के नाम हैं
1: हाँ,
0: ठीक है वो मंचन तो अलग है वो जो सबनते बड़ी लीला है बाय कह जाए महारास
1: शरद पूर्णिमा पे
0: बाको एक परंपरा हमारे यहाँ है आपने सुनियो होगो देखियो होगो चंद्र सरोवर है गोवर्धन के पास में पारासोली में माँ सूरदास जी 70 साल तक अपनी पदन की रचना करी
1: हाँ, साधना भी करी
0: साधना करी वो चंद्र सरोवर है वहाँ पे तो चंद्र सरोवर प्राचीन कुंड है। चंद्र सरोवर के पास में शरद पूर्णिमा की रात को वहाँ पे जो है जब बिल्कुल उजारो हो जाए तब भगवान कृष्ण लीला करते हैं गोपी ने संग में
1: तो नित्य रास कुंज रास बसंत रास अलग अलग रास हैं।
0: और खासकर जैसे शरद पूर्णिमा वाली बात एक और रह गई अधूरी कि जब वो शरद पूर्णिमा पे महारास हुए तो भगवान कृष्ण जितनी गोपी देखें उनके साथ हरेक कृष्ण भगवान बन करके असंख्य कृष्ण भगवान बन जाए
1: जी
0: राधिका बन जाए
1: मतलब एक एक गोपी के काना को जो भाव है वो समाहित हो जावे। तो शिकरवार जी जो हमारी ये रासलीला विधा है या में संगीत और साहित्य को भी बड़ो योगदान है या बारे में भी कछु बताओ।
0: चंपा जी ये सवाल आपने बहुत अच्छा करे हुआ है
1: जी जी जी
0: के जे जो है रासलीला में संगीत और साहित्य को क्या योगदान यानी कैसे समाहित है।
1: हाँ
0: देखो रासलीला पूरी तरह एक संगीत प्रधान एक मंचन है
1: जी,
0: जो भगवान कृष्ण की लीला हम मंच पे एक नाट रूप के रूप में देखे ठीक है तो बाम में जो है संगीत बजे क्योंकि वो रूखी हो जाएगी अगर लीला होगी तो
1: ब्रजभाषा के जो
0: पद है वो गाए जाएंगे और वही पद गाए जाएंगे जो लीला है रही है एक तरफ रासाचार्य पद गाए वो वही से जुड़े हुए मंचन होगा।
1: तो प्रमुख रूप से कौन कौन से ब्रजभाषा के जो रचयिता हैं रचनाकार हैं पदन के उन किनको गायन प्रमुख रूप से होगा।
0: देखो जामे सूरदास जी ने जो है बालपन के मालूम है सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल की लीला जो है बहुत पद गाए और बनाई उन्होंने उनके हित हरबंश जी के नंददास जी के हैं
1: और जो वाद्य यंत्र हैं शिकरवार जी
0: हाँ वहां में खास बात

0: यंत्र। अब तो देखो आज के जमाने में तो जो है पैड और तमाम चीज आ गई है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: पुराने जमाने में क्या हो,
1: आधुनिकता को
0: हाँ
1: समावेश हो
0: आधुनिक
1: गया अब
0: समाज,
1: तो।
0: हाँ पुराने
1: हाँ
0: जमाने में मृदंग, आपने
1: जी
0: देखी होगी
1: हाँ
0: मृदंग,
1: हाँ
0: मंदिर में अब मृदंग बजाए, ठीक है,
1: जी
0: झांझ, हारमोनियम, ये बांसुरी और सारंगी, ये वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों पर पदन की गाए जाए और वहां पे जो है कलाकार मंचन करें, ये रासलीला हो।
1: देखो से करवाड़ जी, जो रासलीलान को जो मंचन पूरे विश्व पटल पे आज ब्रज की अनोखी एक पहचान दे रहे हो है, तो हम देखे हैं कि रासलीला ना केवल एक धार्मिक आयोजन ही ना है, जो ये हमारी ब्रज की संस्कृति है, हमारा जो सांस्कृतिक महत्व है ब्रज का वो भी यहाँ में समाहित है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कही है चंपा जी, एक तरीके से कहना चाहिए कि ब्रज का जो एक सांस्कृतिक स्वरूप, कोई सवाल पूछे
1: धरोहर।
0: धरोहर कि
1: हाँ
0: ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर कहाँ है, तो
1: जी
0: सबसे पहले हमारे जुबान पे रासलीला आवे वो
1: हाँ, क्योंकि
0: तो
1: ये ब्रज की जो हमारी लोक परंपरा है,
0: जी
1: हमारी जो ब्रज भाषा है, हमारे
0: बिल्कुल
1: ब्रज को जो लोक संगीत है, हमारे ब्रज को जो नृत्य है ना, वो
0: जी
1: या रासलीला की विधाते जीवित
0: जी
1: है।
0: भी,
1: और
0: और
1: यही लिए सिकरवार जी ये बात निकल के आवे है कि जो रासलीला है वो भारतीय शास्त्रीय जो हमारा रंगमंच है
0: जी
1: और जो हमारा ब्रज को लोक नाट्य है, बाको अनूठो संगम
0: अनूठा संगम है,
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: मानो
0: बिल्कुल।
1: जावे
0: हाँ
1: है
0: अब जैसे हमारे जो शास्त्रीय संगीत है,
1: जी।
0: तो जैसे आपने देखा होगा हवेली संगीत है, वो
1: हाँ
0: मंदिर में बजाया जाए कि राजा के दरबार में बजाया जाए, वही संगीत शास्त्रीय संगीत जहाँ बजाया जाए, और आपने
1: जी
0: देखा होगा कि जहाँ में पहले शुरू में जो मंच पे
1: जी
0: नृत्य हुए, वो
1: जी
0: गोपियां
1: जी
0: नृत्य करें, वो नृत्य कहाँ से आया हो, आज के समय में जैसे हम लोग जो देखे ना कथक नृत्य, कथक नृत्यांगना जगह जगह मंच पे हो, वो कथक जो है रास से निकले हुए है,
1: जी
0: यानी
1: हाँ
0: रास के प्रादुर्भाव है वो।
1: जी कि देखो जो आधुनिकता को जो समावेश है, तो रासलीला में आजकल कुछ विशेष परिवर्तन कहाँ आए हैं, या कि और भी हमारे श्रोता भैया वे
0: जे
1: नानकू।
0: तो चंपा जी बहुत बढ़िया सवाल करे आपने, जे और
1: हाँ
0: जे हर एक के मन में आवे
1: जी
0: कि
1: जी
0: पहले
1: जी
0: जो रासलीला हम देखत गए, बा रासलीला में और आज की रासलीला में अंतर है,
1: हाँ जो
0: देखो
1: थोड़ा
0: समय, हाँ
1: आधुनिकता
0: हाँ
1: को
0: आधुनिकता का असर है और
1: जी
0: फिर परिवर्तनशील समय है, तो
1: जी
0: एक तो जो है पहले क्या है कि सामान्य मंच बनता ही और
1: हाँ
0: बातें भक्ति में डूब जाते लोग, अब क्या है कि अब प्रकाश व्यवस्था है गई है, लाइटिंग
1: हाँ
0: है गई है, और ध्वनि के यानी जो साउंड वाले जो वो
1: तकनीक
0: हैं
1: आ गई
0: तकनीक
1: है,
0: नई नई आ गई है,
1: मंच
0: और
1: सज्जा
0: मंच सज्जा इतनी गजब की है गई है कि भाई चित्ताकर्षक मतलब देख रहे हो, तो वो
1: हाँ।
0: चीज जो है मंच में सजाई जाए।
1: और सिकरवार जी बहुधा ऐसा भी देखने को मिले के रासलीला को है ना, कई बार पर्यटन और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वहां भी कई बार मंचन हो रहे
0: मंचन
1: हो
0: हो जाए,
1: है
0: वो जैसे
1: ना।
0: मान लो सरकारी मंचन है बहुत सारे, तो बहुत सारी संस्थाओं करामे, तो वहां में रासलीला रखी जाए,
1: रखी
0: और तो जब
1: जावे
0: रखी जाए तो बाह को नेक स्वरूप थोड़ा सा एक आकर्षक बनाया जाए।
1: तो सिकरवार
0: एक
1: जी
0: चीज और
1: एक
0: परिवर्तन भयो है चंपा
1: जी
0: जी, के पहले बालक, सिर्फ बालक ही जो है एक परंपरा रही है,
1: जी
0: लेकिन समय अब एक जैसा ना रही आप
1: हाँ
0: मालूम है, क्योंकि
1: युवा
0: हमारी
1: जो है
0: हमारी
1: वो
0: बच्चियां भी
1: भी
0: आगे बढ़ रही हैं, वो
1: हाँ
0: अच्छो मंचन करें, जो रासलीला में अब बालिकाओं आ रही हैं, वो
1: जी
0: राधा और गोपी की रोल में आ रही हैं,
1: भूमिका में
0: हाँ भूमिका,
1: है
0: कहीं कहीं तो जो है कृष्ण भगवान बच्चियां बन रही हैं, अच्छा मंचन कर रही हैं और बहुत बढ़िया रासलीला है।
1: जी। तो सिकरवार जी किन किन स्थानन पे रासलीला ब्रज के इन पे विशेष रूप से प्रसिद्ध है, या बात की भी जिज्ञासा हमारे बहुत सारे
0: हाँ
1: श्रोता भैया बहनान को रह
0: देखो
1: बे।
0: वैसे तो रासलीला कोई भी आदमी अपनो वैष्णव है, भक्त है, कृष्ण भक्त, कहीं भी देश में कहीं करा, देश विदेश खूब होते हैं, लेकिन
1: हाँ
0: जो परंपरागत है जहाँ
1: जी
0: शुरुआत हुई, वो तो शुरुआत हुई वृंदावन में और मथुरा में, नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, दाऊजी में,
1: हाँ
0: ये और गोवर्धन में, ये ऐसी जगह हैं जहाँ अब साल भर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रासलीला होते रहते हैं।
1: हाँ हाँ सिकरवार जी आपने बिल्कुल बहुत
0: जी
1: अच्छी बात, ये बिल्कुल सही बात बताई है कि जो स्थानन को आपने नाम लियो है ना, यहाँ तो पूरे साल
0: पूरे साल होते
1: कोई
0: रहे
1: भी ऋतु होए,
0: बिल्कुल
1: कोई भी व्रत होए, कोई भी उत्सव होए, पर्व होए, रासलीला को मंचन तो
0: हो,
1: जरूर होएगो।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: सिकरवार जी एक जिज्ञासा भी हमारे मन में आ रही है, देखे हैं कि जो हमारी ये रासलीला विधा है या को जो भविष्य है और या विधा को जो संरक्षण है, बाकी का जो भी आजकल खूब प्रयास किए जा रहे हैं
0: हाँ, ये बहुत प्रयास है रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन परंपरा है, ये बचे कैसे हो, और
1: जी।
0: जाके
1: तो
0: काजे
1: याके काजे फिर का
0: जा
1: है रहे हो
0: जाके
1: है
0: काजे जो कलाकार हैं ना, जो मंचीय कलाकार हैं,
1: जी,
0: जो जो गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, उन्हें, हाँ
1: पारंपरिक जो
0: पारंपरिक कलाकार
1: कलाकार
0: हैं,
1: हैं,
0: उन्हें बताया जाए कि भाई आप रासू करो, रास सीखो, और रास के काज में बढ़ावा दियो जा रहा है, प्रोत्साहन
1: प्रोत्साहन
0: दियो जा रहा है,
1: जी
0: हर
1: और
0: स्तर पर दियो जा रहा है, और संस्थाओं दे रही है, कैसे हुई ये जो कला बचे
1: प्रशासन को जो
0: प्रशासन,
1: सहयोग
0: हाँ,
1: है।
0: और यूनेस्को में भी जो बात चल रही है कि ये एक संरक्षित विरासत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जुड़ जाए।
1: यानी कि जो नई पीढ़ी है वाकुवी या विधाते जोड़वे की ओर प्रयास हो
0: करे
1: रहे हैं,
0: बहुत
1: है ना।
0: तेजी से करे जा रहे हैं कि कैसे
1: हाँ,
0: बचे विधा।
1: तो शिखरवार जी ये देखो कि जो रासलीला है ये केवल नाट्य परंपरा ही ना है, बल्कि हम देखें कि पूरी हमारी जो भारतीय संस्कृति है बाकी जीवंतता को ऐसा प्रतीक है कि यहाँ पर भक्ति है, कला है और दर्शन को जो अद्भुत संगम
0: संगम
1: है वो
0: बिल्कुल
1: दिखाई पड़े हैं। और जो रासलीला की परंपरा है कि ये हमें ये बतावे है कि प्रेम और समर्पण ही एक ऐसा माध्यम है कि आप ईश्वर की सत्ता तक पहुंच सके हैं,
0: पहुंच
1: अपने
0: सके
1: आध्यात्म को
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: प्राप्त कर सके हैं।
0: बिल्कुल
1: तो या के
0: सही।
1: बारे में आप कछु हमारे श्रोता भैया
0: देखो
1: बहनान
0: देखो
1: को।
0: चंपा जी, ऐसा है कि जो भक्ति है, जो मेरा अपना मानना है, भक्ति कई तरीके, जैसे हम आंख बंद करके भगवान भजन कर रहे हैं या हम कथा सुन रहे हैं, और ये जो हम मंचन देख रहे हैं, लीला लीला देख रहे हैं, एक टकी है कि तो ये भगवान की भक्ति है। और ये
1: जी,
0: बात बताई जाए मंच से,
1: जैसे एक सखी
0: हाँ
1: संवाद है, सखी देखो तो यमुना तट पे श्याम बजावत बांसुरी, सुनती सुधबुध सब बिसर गई, तन मन भये मगन हरी। तो
0: हाँ
1: कितने अपने आप
0: ये पद
1: को,
0: हैं, ये पद
1: हाँ
0: गाए जाएं,
1: जी,
0: जैसे श्याम सुंदर मदन मोहन मुरली मधुर बजावे, वृंदावन की कुंज गलिन में रास रचावे, नाचत गावत गोप संग प्रेम सुधा बरसावे, दीनन हित अवतार धरे सब दुख दूर भगावे।
1: और शिखरवार जी महाराज को तो एक पद है ना, गोपिन संग नाचत गिरधारी, बाइज
0: हाँ,
1: बताओ ना
0: वो जो है वो
1: जी।
0: गोपिन संग नाचत गिरधारी, रूप अनूप अति न्यारी, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही श्याम, ब्रज भयो उजियारी। ये जो है गाया जाए महाराष्ट्र पे, यानी जो है वो शरद पूर्णिमा की रात को।
1: जी,
0: ये
1: तो शिखरवार जी देखो रासलीला की जो ये विधा है, रासलीला की ये तमाम जो विषय हैं, इतनी रोचक चर्चा आपने या विधा पे हमारे श्रोता भैया बहनान के संग करी है। तो हम तो आपते यही कह में, और पद भी आपने सुनायो है, तो हमारो तो आपते यही निवेदन है कि इतने रोचक विषय पे बड़ी सुंदर सुंदर जानकारी परक सूचनान को हमारे श्रोता भैया बहनान के काजे लेके आप ऐसे ही स्टूडियो आते रहे करो और हमारे श्रोता भैया बहनान को समृद्ध करते रहे करो।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और आप बता रहे हो कि अब जैसे जो है अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो आयु आ रहा
1: जी
0: है ब्रज
1: जी
0: में, तो पुरुषोत्तम मास में आप मालूम है कि चारों तरफ भक्ति को माहौल हुए, गिरिराज की परिक्रमा लगे, कथा वो हुए,
1: जी
0: तो रासलीला जगह जगह होंगी,
1: जी
0: जैसे हम लोग कथा करामे ना वैसी रासलीला होंगी और मंच सजेंगे। तो
1: जी
0: ये जो रासलीला एक तरीके से कहना चाहिए कि लोग जो है पुण्य कमावे की कार्य, जहाँ अधिक मास में हूँ रासलीला को बहुत एक तरीके से प्रचार प्रसार होगा और लोग देख भी आएंगे दूर दराज के
1: जी
0: ब्रज में।
1: जी जी आपने बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता भैया बहनान को दी है। तो शिखरवार जी देखो आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो में पधारे और रासलीला की या नाट्य परंपरा पे या पौराणिक विधा पे आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोता भैया बहनान को दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: चंपा जी आपने स्टूडियो बुलाया हो, आपको बहुत बहुत आभार। सब श्रोता भैया बहनों को मेरा नमस्कार, राधे राधे।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ये भेंट वार्ता, जाको विषय हो ब्रज की रासलीला में नए आयाम, और यह विषय पे चंद्र प्रताप सिंह शिखर वार्ते बात कर रही चंपा जी। चंपा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चंद्र प्रताप सिंह शिखर वार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मिलके जो ब्रज की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली रासलीला है
1: जी
2: वहां में विकसित होते हुए नए आयामन के ऊपर बड़ी गंभीर चर्चा करी है।
1: अरे नृत्य गोपाल जी, देखो हम तो यही चाहे कि जो हमारी आवे वाली पीढ़ी है अगर नए आयाम का लोक विधा में विकसित हो रहे हैं, नए नवाचार के मार्ग खुल रहे हैं, तो हम तो यही कहें कि सब आगे बढ़े और उनते लाभान्वित हो में हमारो प्रयास तो ऐसा ही है।
2: जी हाँ चंपा, हमारे युवान तक यह चीज़ को जरूर पहुंचना चाहिए कि हमारी जो लोक नाट्य की शैली है उनमें हूँ नए नए विकास है रहे हैं
1: हाँ
2: और उनमें हूँ अपार संभावना है विकास की,
1: हाँ
2: अपने आजीविका की हूँ संभावना है।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, पर विकास की जो भावना है ना वा में तो बहुत बड़ा योगदान देखो हमारे खेल कूद की प्रतियोगितान को है, हमारे जो इंडोर और आउटडोर गेम जिनते गेम है उनको है, पर हम देखें कि हमारी जो ब्रज व सुंदरा है ना वहां पे हमारे ना गर्मी के बहुत सारे परंपरागत खेल भी
2: चंपा जी, कल हम गांव में तो हमारे यहाँ तो ताऊ जी खेल रहे, अब वो 36 गोट को जो खेल है ना, और चंगा पो खेलो जा रहे हो, मुकुत बड़ो अच्छा लगो देख। और आप देखो कि जो हमारे नए नए बालक है ना, वे हमने देखे कि वहाँ सरोवर के कुंड के किनारे ना लंबी कूद के काजे तैयार कर रहे, और धीरे धीरे कुश्ती थोड़ी बहुत शाम को कर रहे, और दौड़ वे को अच्छो खासो कि हमें अपने स्वास्थ्य के ताई ध्यान रखना है। तो हमारे परंपरागत खेल हुई या समय खूब बालक खेल रहे हैं।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो बालक खेल रहे हैं तो आप उन्हें देख आए, पर हम तो यह वक्त देख रहे हैं घड़ी की ओर, तो समय को जो संकेत दे रहे हो वो तो हमें समझना ही पड़ेगा। प्यारे भैया बहनाओं, करवे के काजे तो बात बहुत सारी है, पर आप जाने और हम या बात को जाने, तो इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
2: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जायवे की अनुमति प्रदान करें।
1: नमस्कार।

अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, समय हो गया प्रोग्राम रेडियो किड्स का, जहां बच्चे ही है असली होस्ट। हम लाए हैं आपके लिए मजेदार बातें, प्यारी कविताएं, छोटी कहानियां और ढेर सारी सीख। हम आए हैं द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। मेरा नाम कायना पाल है, हम कक्षा 4 से हैं।
1: मेरा नाम अथर्व है।
2: मेरा नाम नैसा है।
3: मेरा नाम पहल है।
4: और मेरा नाम है अनय।
0: दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धरती हमारी माँ है, लेकिन हम क्या उसका सही ख्याल रख रहे हैं?
1: नहीं, हम पेड़ काटते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं।
4: हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए
3: और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए।
2: तो दोस्तों, आज से हम सब ग्रीन अर्थ का वादा करते हैं।
3: धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार।
4: अरे, हमने अभी बात की धरती माँ की और माँ की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अब बात कर अपनी सबसे प्यारी माँ की।
0: माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है।
1: मदर्स डे माँ के प्यार और त्याग को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
3: माँ की ममता का कोई मूल नहीं, वह हर दर्द सहकर भी कुछ बोलती नहीं।
0: मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, सुनाऊँ क्या?
2: हाँ, सुनाओ।
0: ममता का सागर है माँ, स्नेह का झरना है माँ, लोरी के मीठे बोल गाकर सपनों को जगाती है माँ, त्याग की मूर्ति है माँ, समय साक्षी है इसका, इतिहास नया रचती है माँ।
4: बहुत अच्छी कविता सुनाई कायना।
1: तो दोस्तों, मदर्स डे पर हम अपनी माँ को थैंक यू जरूर कहेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: गीत तो बहुत अच्छा था। माँ के साथ समय बिताना मुझे सबसे अच्छा लगता है और छुट्टियों में तो मैं सबसे ज्यादा समय माँ के साथ बिताती हूँ।
1: सही कहा ना ऐशा, छुट्टियाँ भी तो आने वाली हैं। दोस्तों, छुट्टियाँ आ रही हैं, आप सब क्या करने वाले हैं?
2: मैं नई कहानी की किताब पढ़ूंगी।
3: अच्छा पहल, मैं भी पेंटिंग सीखूंगा।
4: अरे वाह अथर्व, मैं तो अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा।
0: सही कहा ने, हम लोग भी अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। हमें अपनी छुट्टियों का सही उपयोग करना चाहिए।
3: छुट्टियों में तो मैं रेडियो भी सुनता हूँ।
2: सच में अथर्व, रेडियो पर क्या सुनते हो तुम?
3: गाने, कहानी।

0: और बहुत कुछ।
1: जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी आ रही थी, तब मैंने सोचा कि आकाशवाणी क्या है। कायना, क्या तुम्हें पता है आकाशवाणी क्या है?
2: थोड़ा थोड़ा पता है पहल।
3: चलो दोस्तों, एक छोटी सी क्विज करते हैं। आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है पहल?
1: ऑल इंडिया रेडियो।
3: सही कहा पहल।
0: मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसी को पता है?
1: नहीं।
3: नहीं।
1: हाँ, मुझे पता है, इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी।
0: सही का पहल।
3: मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आकाशवाणी का उद्देश्य क्या है?
1: मैं बताऊँ? सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।
3: सही कहा कायना।
1: वाह, आकाशवाणी तो सच में भारत की आवाज है।
3: आकाशवाणी ने देश की आवाज हर घर तक पहुंचाई है।
4: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ आकाशवाणी पर। सुनाओ क्या?
5: हाँ हाँ सुनाओ।
4: आकाशवाणी की मधुर पुकार, सुरों में बसी हर एक झंकार, खबरों से लेकर गीतों तक छू ले दिल के हर एक तार। सुबह की रोशनी संग आए नई उमंग नए विचार, रात के खामोशी में भी बजे उम्मीदों का सितार। गांव शहर को जोड़ती डोर, हर भाषा का ये त्योहार, आवाजों में बसती दुनिया, आकाशवाणी का संसार।
3: वाह नायशा,
1: वाह नायशा, क्या कविता सुनाई।
4: धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कौन थी?
1: मैं जानती हूँ।
4: बताओ पहल।
1: वह बहुत बहादुर थी
3: और उन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ युद्ध करा था।
0: उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अपनी जाति नहीं दूंगी।
1: रानी लक्ष्मीबाई ने हमें बहादुरी सिखाई थी।
3: मैं कविता सुनाना चाहता हूँ झांसी की रानी पर। सुनाऊं क्या?
4: हाँ हाँ ने सुनाओ।
3: वीरता की वो मिसाल थी, भारत की शान कमाल थी, नाम तो जिसका रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो ढाल थी। नन्ही उम्र में सीखा जिसने तलवारों से खेलना, दुश्मन के आगे डटकर उसने कभी ना सीखा झुकना। घोड़े पर बैठे रण में उतरी, हाथों में थी तलवार, अंग्रेजों से लड़ी वो डटकर, ना मानी कभी हार। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, गूंज उठा था मैदान, उसकी वीरता के आगे कांप उठा था दुश्मन जहान। देशभक्ति की ज्वाला बनकर इतिहास में वो अमर हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हर दिल में आज भी जिंदा हुई।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई अने।
4: तो चलिए सुनते हैं गीत।
1: हाँ हाँ चलो सुनते हैं।

0: हमें अपने बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए नायशा?
1: क्योंकि उनका अनुभव हमें सही रास्ता दिखाता है।
2: हाँ, और हमें सबको नमस्ते करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए।
1: सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है।
2: बड़ों के सम्मान पे अभी हमने बात की, अब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊँ?
3: हाँ, सुनाओ।
2: बड़ों का करना सदा सम्मान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान। उनके अनुभव उनकी सीख बनते हैं हमारे जीवन की सीख। माता पिता, गुरु और हर बुजुर्ग, इनसे ही सस्ता जीवन का मार्ग। इनकी बातों में छुपी है रोशनी जो दूर करे हर एक परेशानी। आओ मिलकर ये ठाने हम, रखेंगे बड़ों का सदा हम साथ। उनकी सेवा उनका मान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान।
0: अच्छे संस्कार अपनाएं, सबका दिल हम जीत जाएं। और ये संस्कार हमें कहानियों से भी मिलते हैं।
2: चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाऊं?
3: हाँ, सुनाओ।
2: एक किसान के पास सोने का अंडे देने वाली मुर्गी थी, लेकिन उसने लालच में आके सब कुछ खो दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
0: हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। वाह, क्या प्यारी सी थी पहल। अब चलो एक कविता हो जाए।
2: चलो मिलकर पेड़ लगाए, धरती को स्वर्ग बनाए।
0: मैं एक पेड़ पे कविता सुना रही हूँ। पेड़ हमारे साथ ही है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी हैं, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
4: नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं आज आप सभी को टॉपिक अवेयरनेस के बारे में कुछ बता रही हूँ और जागरूक भी कर रही हूँ। आशा है कि आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो सुनिए, आप सभी जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आप सभी को ये ट्रैफिक लाइट दिखती है ना, तो मैं इसका मतलब बताऊँ। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, येलो लाइट का मतलब स्लो और ग्रीन लाइट का मतलब गो। तो जब भी आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो इन सभी का ध्यान

0: रुकना।
1: पैदल यात्री सावधानी से सड़क पार कर रहे, बेवजह हॉर्न ना बजाए, स्पीड में गाड़ी न चलाए, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, दुर्घटनाओं से बचे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी ना करे, उससे थोड़ी सी पीछे खड़ी करे। आपका जीवन अनमोल है। धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, आज हमने सीखा धरती की रक्षा, माँ का सम्मान, समय का सही उपयोग और अच्छे संस्कार। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रेडियो किड्स में।

अभी आप कार्यक्रम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए आपको जानकारी देते हैं आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद आप सुन सकते हैं स्वांग, किस्सा शाही लकड़ियारा का। कलाकार होंगे गुलाब सिंह खंडेलवाल और उनके साथी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद उठा सकते हैं आप आज शाम 5:10 पर। वहीं 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। ग्राम संसार पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज

शाम 6:30 बजे और कृषि जगत, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:05 पर।

इसके अलावा आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे कुछ कहता है दिल। ये दिनांक 30 अप्रैल को पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा कवियों पर आधारित कार्यक्रम है। फिल्म संगीत, इस कार्यक्रम का आनंद आप उठा सकते हैं रात्रि 8:30 पर। और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 11:10 से। तो ये थी जानकारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सॉन्ग।

इंद्रदली क्वांग पुतियन थाई चंगिंदु शिजियन वु दियन शुवु फंचुंग ताओ लियु दियन से शुवु फंचुंग हा शु लियु दियन ताओ शु ची दियन सांच फंचुंग श्यांग या चो पुसुंग ताओ पुचुंग वा जेमु चाओ चेन क्वांग पो पिन लियु वे याओ वु एर पा लिंग चेन हा वान चेन क्वांग पो पिन लियु वे याओ वु से याओ लिंग चेन हा तिंग चुंग पांग यू मन刚才收听全领土电台应用程序和全领电视台免费的微信盘上播放的全领土电台的世界广播。听众朋友们请收听本地拉比唱歌团的一个固定乐器，请你们享受。

听众朋友们，你们刚听了曼摩汉塞格尔唱的一首圣歌，请收听安努拉塔波尔瓦唱的一首圣歌。

0: खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं विजेता चतुर्वेदी।
3: और मेरा नाम है दर्पण टिकिया, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी। बड़े मंच पर खिलाड़ी अक्सर एक ही बात कहते हैं, स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स पर टिके रहो, क्योंकि जब शोर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, उम्मीदें भारी लगती है, तब वही छोटी छोटी चीजें इंसान को संभालती है जो उसने साल दर साल की है।
2: जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम कई बार चीजों को उतना उलझा देते हैं कि असली बात पीछे छूट जाती है। अब देखिए ना, मदर्स डे शुरू करने वाली एना जेरविस भी बाद में इस दिन से नफरत करने लगी। वो कहने लगी कि इस दिन ने अपनी सादगी को खो दिया है, क्योंकि माँ को सम्मान देने की सबसे बड़ी बात कहीं दिखावे में थी ही नहीं, वो तो हमेशा उन छोटी सच्ची बातों में थी जो दिल से आती थी।
3: और खेल भी यही सिखाता है, जब मन में दबाव बढ़े तो वापस उन्हीं चीजों पर जाइए जिनसे शुरुआत की हो, असल पर जाइए, दिखावे पर मत जाइए, क्योंकि कई बार आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है कि चीजों को दोबारा से सरल बनाया जाए। यही आज का संदेश है, तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे क्रिकेट, तीरंदाजी यानी आर्चरी, थोड़ी बहुत बात शूटिंग पर करेंगे और उसके अलावा फुटबॉल समेत कई और अन्य खेल खबरों पर डालेंगे नजर।
1: आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में संघाई चाइना में हुआ जो मुकाबला, जहां पर मिला है भारत को गोल्ड,
0: जी उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में क्या चल रहा है, प्लेऑफ्स की दौड़ हो गई है तीव्र, उसके बारे में बात करेंगे।
1: और संडे साइकिल पर भी रहेगी नजर,
0: जी हाँ, संडेज ऑन साइकिल फिट इंडिया प्रोग्राम की एक पहल। इसके अलावा बातचीत करेंगे फुटबॉल पर, क्या कुछ चल रहा है एएफसी अंडर 17 एशियन कप में, और उसके अलावा भी कई सारी खेल खबरें हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे अपने रेडियो सेट के पास। मेरा नाम है दर्पण
1: और मैं हूँ विजेता
0: और आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: भारतीय महिला टीम ने शंघाई में रचा इतिहास, चीन को शूट ऑफ में हराकर जीता स्वर्ण पदक। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज टू शंघाई 10 मई 2026, भारत की महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रविवार को शंघाई के युआन शेन स्पोर्ट्स सेंटर में इतिहास रच दिया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहर की तिकड़ी ने तनावपूर्ण शूट ऑफ में चीन को 5-4, 28-26 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये भारत का 2021 के बाद पहला आर्चरी वर्ल्ड कप गोल्ड है।
1: जी हाँ, आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड कप स्टेज वन में भारत की कंपाउंड महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और कल रिकर्व महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, आज जीता है। और ये खुशखबरी और भी दुगनी हो गई तब जब ये सुनने में आया कि फाइनल में जो चुनौती थी वो बहुत कड़ी थी। सामने चीन की मजबूत टीम थी और चीन में ही क्योंकि ये मुकाबला खेला जा रहा था तो होम ग्राउंड एडवांटेज आप जिसे कहते हैं वो तो था ही चीन के पास। अक्सर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि आर्चरी इज अ मेंटल गेम, आर्चरी एक ऐसा खेल है जो कि मेंटल है, यानी कि मानसिक तनाव का खेल है। आपका निशाना कितना सटीक होगा ये अक्सर निर्भर करता है कि किस तरह से आप मानसिक दबाव को झेल पाते हैं, और दोनों ही टीमों पर दबाव था लेकिन भारतीय टीम ने दबाव को झेला, मुकाबला टाई हुआ, शूट ऑफ में गया लेकिन शूट ऑफ में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इस जीत पर खास चर्चा की हमने भारतीय कोच पूर्णिमा महातो से, जाना माना नाम आर्चरी की दुनिया में, उनका क्या कहना है ये सुनते हैं।
2: ये तो बहुत खुशी की बात है और लड़कियों का मेहनत वाला है। जो आर्चरी प्रीमियर लीग शुरू हुआ था लास्ट ईयर

0: तो इससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और बहुत अच्छा से सूट किया इन लोगों ने, कोरिया के साथ भी और चाइना के साथ भी, और सूट ऑफ में जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आने वाले समय में जैसे एशियन गेम्स से इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, उन मेंटल मतलब बहुत स्ट्रांग रहेगी लड़कियां।
1: जी हाँ, आर्चरी प्रीमियर लीग की उन्होंने बात की। आर्चरी प्रीमियर लीग एक फ्रेंचाइज आधारित टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी और इस वर्ष भी नवंबर में दूसरा संस्करण होने की पूरी पूरी उम्मीद है। पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो दूसरा संस्करण हैदराबाद में होगा, जहां पर देश विदेश के टॉप आर्चर्स शिरकत करते हुए नजर आए। और जिस तरह हमने देखा, चाहे क्रिकेट में IPL की बात हो, चाहे टेबल टेनिस में UTT की बात हो, हॉकी इंडिया लीग की बात हो, इस तरह के तमाम फ्रेंचाइज आधारित टूर्नामेंट्स ने लगातार हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है, यही बता रही थी पूर्णिमा महतो। और ऐसा ही कुछ कहा टीम की सदस्य अंकिता भाकट ने भी।
2: और जो पिछले साल हमारे APL हुआ था उसमें मेरे को बहुत फायदा हुआ, सेम प्लेटफॉर्म में इतना इंटरनेशनल आर्चर के साथ खेल के अपने होम कंट्री में और इतना क्राउड के बीच में खेल के मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसे APL हो, इससे सारे इंडियन आर्चर को बहुत फायदा होगा।
3: अनुभव और स्थिरता की मिसाल है अंकिता भगत, जो 2017 में अपना करियर शुरू कर चुकी हैं और लगातार आगे बढ़ती रही हैं। उन्होंने अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया है। शूट ऑफ में उन्होंने 9 का तीर मारकर टीम की शुरुआत मजबूत की।
1: जी हाँ, अंकिता ने तो ये दिखाया ही कि वो कितनी सुलझी हुई आर्चर है, बाएं हाथ की आर्चर है। और जैसा हमने कहा, प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने ये करके दिखाया कि वो टीम का हिस्सा क्यों है, और सटीक निशाना उन्होंने लगाया। इस प्रेशर को झेलना ही आर्चरी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पूर्णिमा महतो बताती हैं कि कैसे भारतीय टीम ने उस प्रेशर को झेला।
4: हमने चाइना में जाकर चाइना को हराया है, फाइनल में सामने चाइना था। और अक्सर आप लोगों से ही हमने सुना है कि आर्चरी जो है वो एक मानसिक खेल है, मेंटल गेम है। तो जब चाइना के होम ग्राउंड पर चाइना की टीम सामने आ जाती है फाइनल में, तो वो मानसिक दबाव किस तरह का होता है, थोड़ा सा वो हमारे लिसनर्स को समझाइए।
0: हाँ देखिए, दोनों के ऊपर में तो प्रेशर था ही, क्योंकि होस्ट कंट्री है तो उनको भी अच्छा ही परफॉर्म करना है, और हमारा जो प्लेयर लोग थे उन लोग भी एक होस्ट कंट्री के साथ खेल रहे, तो प्रेशर बना। तो दोनों का स्कोर देखिएगा बहुत अच्छा नहीं रहा, तो वो हाई स्कोर गया नहीं, और दोनों टीम ही प्रेशर में था, लेकिन बहुत अच्छा रहा है। मतलब उन लोग तो प्रेशर में था ही, पर देखिए प्रेशर तो सबको रहता है, कौन कितना पॉजिटिवली उसको हैंडल करना जान, यही तो गेम है बस।
3: सिर्फ 17 साल की नई सनसनी कुमकुम अनिल मोहड़ 17 वर्षीय हैं और ये टीम की सबसे युवा सदस्य हैं। उनके कोच प्रफुल्ल डांगे ने उन्हें नेशनल ट्रायल्स में टॉप करने के बाद इस टीम में जगह दिलाई। शूट ऑफ में सबसे अहम पल में इस किशोरी ने परफेक्ट 10 का तीर मारा और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया।
1: जी हाँ, इस तिगड़ी की हम बात कर रहे हैं, अंकिता भाकट की हमने बात की और कुमकुम की हमने बात की, लेकिन टीम की सबसे अहम सदस्य दीपिका कुमारी को हम कैसे भूल सकते हैं। दीपिका कुमारी जो कि सबसे अनुभवी आर्चर हैं, 2010 में लगभग इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, उससे भी पहले से खेल रही हैं, लगभग 4 ओलंपिक्स में शिरकत कर चुकी हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और आज भी शूट ऑफ में आखिरी तीर इन्हें ही चलाना था। 8 भी मारती तो भी मुकाबला दोबारा टाई हो जाता और फिर नापा जाता कि किसका तीर सेंटर के सबसे ज्यादा करीब था, लेकिन दीपिका ने अपना अनुभव दिखाते हुए येलो रिंग में यानी बीचों बीच 9 पर निशाना साधा, जिसके चलते भारत ने गोल्ड मेडल कंफर्म किया। पूर्णिमा महतो कहती हैं,
0: बहुत ही टैलेंटेड लड़कियां, आप देख रहे होंगे उनको 2010 से देख रहे होंगे, से आज ये 26 आ रहा, अपने आप को कंटिन्यू टीम में रखना, बीच में बेबी हुआ उसके लिए एक मदर है, और अपने आप को इतना मतलब फिट रखी है, और बहुत अच्छा और बहुत बड़े दीपिका जैसे इतने बड़े जगह में रिजल्ट, दीपिका जैसे आर्चर का किसी कोई आर्चर का नहीं इंडिया।
3: एक मदर बनने के बाद एक मदर में कितनी शक्ति आ जाती है, कितनी ऊर्जा आ जाती है, वो

0: सिद्ध करके दिखाया दीपिका कुमारी ने।
1: जी हाँ, मदर्स डे की हम बात कर रहे हैं तो बहुत बहुत सलाम दीपिका कुमारी को, और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो वर्ल्ड कप का तीसरा स्टेज है जो कि तुर्की में खेला जाने वाला है, उसमें भी वो अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगी। और इसके बाद एशियन गेम्स भी है, और हमने कुछ दिन पहले अपने कार्यक्रम में दीपिका से की गई बातचीत आपको सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बेबाक तरीके से बोला था कि उनका निशाना है ओलंपिक गोल्ड। खैर, एक और भारतीय आर्चर आज शिरकत कर रही थी इस विश्व कप में, सिमरनजीत कौर, जो इंडिविजुअल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। हालांकि सेमीफाइनल में कोरियन खिलाड़ी कांग के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने एक अच्छी टक्कर दी जांग मिनही को, जो कि कोरिया से आती हैं, लेकिन अंततः सिमरनजीत कौर के हाथ हार मिली और उन्हें बिना पदक के वापस आना पड़ा। लेकिन भारतीय दल का यह अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है वो साल दर साल याद रहेगा। तो भारतीय आर्चरी टीम को हमारी शुभकामनाएं, और अब रुख कर लेते हैं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का।

0: आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट का नहीं, क्रिकेट जगत में पिछले कुछ सालों में आई एक क्रांति का नाम है। हर सीजन कुछ नया धमाकेदार देखने को मिलता है, नए अतरंगी शॉट, बल्लेबाजों की बढ़ती निडरता और हर ओवर में आसमान को छूता रोमांच। आईपीएल एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को मनमोहित कर देता है। इस साल भी हमने देखी चौके छक्कों की बरसात, रनों के पहाड़। एक समय था जब 20 ओवर में 200 रन बहुत होते थे, आज 250 भी कम लगते हैं। एक समय था जब कोचेस कहते थे सीधे बल्ले से खेलो, हवा में शॉट मत मारो। आज पहली ही गेंद पर बैट घुमाकर छक्का लगाने से बैटर्स कतराते नहीं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी टीम है जो आज भी कहती है वी विल स्टिक टू द बेसिक्स। पारंपरिक तरीकों पर टिककर भी गुजरात टाइटंस ने 11 में से 7 मैच जीते हैं और इस वक्त अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। कल शाम अपने मुकाबले को एक तरफा बना इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को उन्हीं के घर में 77 रन की एक करारी शिकस्त दी। रणनीति वही स्टिक टू द बेसिक्स। पहले मिस्टर कंसिस्टेंट शुभमन गिल ने और उनके सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन दोनों ने अर्धशतक लगाए, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने 230 का पहाड़ जैसा लक्ष्य मेजबान टीम के सामने रख दिया। इसमें कुछ योगदान राजस्थान की दिशाहीन गेंदबाजी का भी था, 19 रन एक्स्ट्रास के तौर पर आए। लेकिन फिर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने दिखाया कि आप पारंपरिक गेंदबाजी कर भी T20 में सफलता हासिल कर सकते हैं। पावर प्ले में ही मोहम्मद सिराज ने एक और काहिजो रबाडा ने दो विकेट लेकर टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। जहां पूरी दुनिया के गेंदबाज T20 क्रिकेट में नई नई तरीके की स्लोअर बॉल्स इजाद कर रहे हैं, वहां रबाडा कहते हैं कि मैं इस तरफ नहीं देखता, मैं बस जो मेरी ताकत है यानी तेज गेंद करना उस पर ध्यान देता हूं।
1: Not really. I feel like the more I try and work on too many slower balls, the more I neglect what I should be working on. But yeah, I haven't bowled too many slower balls this season. But when they're needed, then I'll bowl them.
0: उसके बाद मिडिल ओवर्स में राशिद खान ने प्रतिद्वंद्वी टीम को अपनी फिरकी में फांसा और 4 ओवर में 4 विकेट निकालकर राजस्थान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आपको याद दिला दें कि लंबे समय से राशिद खान भी पीठ की चोट से जूझ रहे थे, लेकिन कमबैक का मंत्रा वही, कुछ नया नहीं करेंगे, जो साल दर साल किया उस पर टिके रहेंगे।
2: बॉडी अच्छा फील हो रहा है और जहाँ पे लैंडिंग की बात है तो जहाँ पे मैं चाहता हूँ बॉल उधर ही ज्यादा गिर रही, तो आई थिंक हैप्पी विद द परफॉर्मेंस अभी तक और कोशिश करूंगा कि अगले भी जितने मैचेस है टीम के उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हम पहले मैच से कर रहे हैं और उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम जीत के तो हम उसी चीज को बरकरार रखें। आई थिंक जब आप जीतते भी हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उसको अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो जिधर भी हमें मौका मिले और जहाँ पे हमने पिछले मैचेस में अच्छी चीजें खराब किए तो उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बाकी अपना क्रिकेट एंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस हो एज अ टीम।
0: गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। RCB, पंजाब किंग्स और अब राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये टीम अंक तालिका में लगातार चढ़ती जा रही है। पॉइंट्स टेबल में अब गुजरात से ऊपर केवल एक टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके खिलाफ गुजरात टाइटंस मंगलवार को खेलेगी।

0: तो भाई सुन रहे थे शिषपाल भाटी को अपनी पसंद पर, और अब एक दो गाना भाइयों की पसंद पर सुनवाते हैं सतपाल और उषा सेठ की आवाज में।
1: और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, गांव फारासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, पुष्पेंद्र कुमार डुंडी और उनके परिवार के सदस्यों की। और वहीं अगली फरमाइश हमारे पास आई है सागर लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले श्रोता हैं हमारे लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और उनके परिवार के सदस्य। वहीं अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और गांव सूप जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, क्षितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता, श्रेयांश और उनका परिवार।
1: और इसी क्रम में अगली फरमाइश चंडीगढ़ से आई है हमारे पास सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की।
0: बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्रपाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा।
1: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: रठौड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार, जय जान, कांता रानी, गुंजन, साहिल वाणी, जयजान और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और उनके परिवार के सदस्य। अगली फरमाइश कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की हम तक फरमाइश पहुंची है। इसी क्रम में अगली फरमाइश जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद, रियान और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये दो गाना है भाई, जब शादी होने के बाद में जब भात दे के भाई आ जाता है उसके बाद एक रस्म है बहन भी फिरौती लेके आती है, तो उषा सेठ सतपाल के यहाँ जब फिरौती लेके जाती है तो दोनों बहन भाई में बात क्या हो रही है तो सुनते हैं आप सबकी पसंद पर।

0: सतपाल उषा सेठ के बाद जो अगली फरमाइश है वह कल गुजर के गायक उपदेश की और उसके लिए पत्र हैं।
1: उसके लिए हमारे पास जो फरमाइश आई है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की, वहीं अगली फरमाइश जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, दुबिया नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: हेमंत भाई, कृषि में पढ़ लेंगे बाकी नाम, अभी सुन लेते हैं। चलिए एक पत्र और पढ़ रहे थे, आप पढ़ लीजिए।
1: छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू की हमारे पास ये फरमाइश आई है, अब सुन लेते हैं।
0: ये उपदेश।
1: हाँ,

0: और अब कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, सब बहन भाइयों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, जिसे प्रस्तुत किया निरंकार और हेमंत ने। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बेहद ही पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और लीजिए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं।

0: साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम कृषि जगत का, जिसे लेकर आपके साथ हैं निरंकार दत्त वशिष्ठ और हेमंत कुमार।

0: कृषिजगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को
1: राम राम। हेमंत भाई
0: जी,
1: भाई किसान भाइयों के समय के पास इस समय बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर भंडारण की बात आती है तो भंडारण का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत करके फसल को उगाते हैं तो अगर उसका सुरक्षित भंडारण नहीं होता है तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। कई बार उसके अंदर कीट और फफूंदी वगैरह लग जाती हैं, उससे आपकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी पर असर आता है, जिससे अगर आपको विपणन करना है तो आपको अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं।
0: जी,
1: ज़रूरी बात है कि जब आप अपने उत्पाद को घर में लाते हैं, जो अपने उसका सुरक्षित भंडारण कर लेते हैं उत्पाद का, तो जो समय पर उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं, क्योंकि मूल्य और आपूर्ति इसका सीधा सीधा संबंध है। अगर मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसके दाम फिर कम मिलते हैं। जब वो मौसम, बहुत सारी चीज़ें हमारे किसान भाई हैं जैसे कि मूल्य संवर्धन करते हैं वो इसीलिए कि बिना मौसम भी अपनी सब्जी है, फल है, उनको मार्केट में ज़्यादा रेट में वो बेच सकते हैं। इसीलिए जो खाद्यान्न की फसल, ख़ासतौर पर अभी गेहूं की कई भाइयों ने गहाई की है, तो थ्रेसिंग के बाद जब घर पे लाते हैं उसमें भंडारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें ये देखना है कि जब आप खेत से थ्रेसिंग करके अपनी फसल को लाते हैं, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि उसके अंदर उसको सुखाने के बाद ही भंडारण करना है, क्योंकि उसको ख़राब करने में नमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो कीट और व्याधि उसके अंदर आने का खतरा रहता है, जिससे घुन वगैरह लग के वो ख़राब हो जाता है। पहले तो उसको सुखाना है, और उसके साथ साथ जहाँ जिन बोरों में उसको रखना है या जिस कंटेनर में रखना है उसकी भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। बोरियों में अगर रखते हैं तो बोरियों को अच्छी तरह से उबलते पानी में डाल के फिर उसको सुखाना है, और जब धूप अच्छी तरह से 2-3 दिन धूप में डाल दें, उसके बाद उन्हीं बोरों में आपको भंडारण करना है। और जो शीत, जो आपका भंडारण गृह है, उसके अंदर भी अगर कहीं दरारें हैं, उसमें किसी भी कीट आदि के अंडे जाने की अगर संभावना लगती है तो उनको नष्ट कर दें, उन्हें साफ़ कर दें। इस तरह से आप अपनी फसल को अगर बचा कर रखेंगे तो उसकी आपको गुणवत्ता बनी रहेगी, नष्ट नहीं होगा। आप देखिए, खाद्यान्न की जब हम बात करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जब हम उसका उत्पादन करते हैं उसे बचाना और भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने उत्पादन किया और उसको चूहे खा गए या कीटों ने ख़राब कर दिया, घुन लग गई, तो जब आप मार्केट में ले जाएंगे उसके दाम नहीं मिलेंगे, वो दाम भी नहीं मिलेंगे और वो हमारे लिए समझिए कि अलग हो जाएगा। हमारी जो खाद्यान्न की हम बात करते हैं कि भंडार उसके हमारे भरे होने चाहिए, उसमें भी फिर कमी आती है।
0: बहुत बढ़िया बात आपने ये बताई कि जैसे पुराने बोरे हैं, जो जूट के बोरे होते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, पहले से ही कीट वगैरह होते हैं, अंडे वगैरह दे रखे होते हैं, और उसी में हम जो है फसल का जो है निकासी उसमें भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो घुन वगैरह लगना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अपनी फसल को आप आसानी से बचा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बनाकर रख सकते हैं। और अब जो है भाइयों को सुनवा देते हैं एक
0: कौशिंदर खजाना और साथियों की है, और फरमाइश भी हमारे पास आई है।
1: ये तो रागनी है भैया, महाभारत के किस्से की है।
0: और इसके लिए हमारे पास फरमाइश भी निरंकार भाई,
1: बिल्कुल पढ़ दो, हमारी रह गई ना ग्राम संसार में, भाई नाराज ना हो जाए।
0: बिल्कुल, तो हमारे पास जो फरमाइश आई है, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश आई है। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की। वही अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की। वहीं बिलासपुर से एक और फरमाइश आई है सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और उनका परिवार।
0: अगली फरमाइश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन और उनके

0: ये परिवार के सदस्यों की हम तक फरमाइश पहुंची है।
1: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और इनका परिवार।
0: गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी हमें फरमाइश भेजी है।
1: अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और इनका परिवार।
0: चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से हमारे पास आई है फरमाइश तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा और शिवी की फरमाइश हम तक पहुंची है। ये
1: नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा और उनका परिवार।
0: शीशपाल अकेला जी ने भी फरमाइश भेजी हमारे पास, जटवाड़ा गाजियाबाद से ये फरमाइश हम तक पहुंची है। और
1: उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और उनका परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई बाग बहारा भदरसी छत्तीसगढ़ से पन्नालाल सेन, तारा सेन, खुशबू सेन, कौशल सेन और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: तो सुन लेते हैं कौशंदर खदाना को।

0: निरंकार भाई, अभी अपने साथियों की फरमाइश पे सुना हमने कौशिंदर खदाना और साथियों को, और अगले हमारे कलाकार हैं बुलंद त्यागी, और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और उनके परिवार के सदस्य,
1: नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा,
0: गांव गोविंदगढ़ माजीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू और उनके परिवार के सदस्य,
1: गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार,
0: गांव पनिहार चक्कर हरियाणा से मोलू कस्बा और उनके परिवार के सदस्यों की हमारे पास फरमाइश आई है। वही हाडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की ये फरमाइश पहुंची है।
1: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेला मेहरा, कपिल मेहरा और परिवार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार,
0: गाँव खोकरावाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और उनके परिवार के सदस्य,
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और उनका परिवार,
0: बाबा कटुई रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उनके परिवार के सदस्यों की फरमाइश आई है हम तक,
1: दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबलू डब्बू,
0: MLV रोड ग्वालियर से फरमाइश आई है सुरेश खुराना, पप्पी कुरन खुराना, लाभ्या आरब और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की,
1: मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर, राही श्रीमती सरिता गोहनकर,
0: प्रणीता, संबलपुर कांकेर से फरमाइश आई है निरंकर भाई, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्यों की,
1: उड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और उनका परिवार,
0: वहीं गांव बुर्दू चैना से जिला भिवानी हरियाणा से फरमाइश आई है महिपाल चौरान, नीरू उत्कर्ष और उनके परिवार, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा, सचिन, सतीश और उनके परिवार के बाकी सदस्य,
1: जनकपुरी सहारनपुर से जोन डेस्केट्रो, रोजी डेकेस्ट्रो, पर्ल डेकेस्ट्रो और विलेस डेकेस्ट्रो,
0: गाँव सरेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है मंटू

0: सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी और परिवार।
0: रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, अफजल ताज ठाकुर साहब की फरमाइश हम तक आई है। वहीं अगली फरमाइश हम तक पहुंची है और ये है राजस्थान से, हनुमानगढ़ से आई है और रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और उनके परिवार के सदस्य।
1: गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी और उनका परिवार।
0: गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश आई है रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूवेश कुमार कंबोज की।
1: सुद्रीवास हिसार से राजू बिंदल, केशव, दक्ष, प्रियांशी और परिवार।
0: ढांडा नरसाना भिवानी से फरमाइश जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों ने फरमाइश भेजी है। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और उनके परिवार के सदस्य। वहीं अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास आई है, ये फरमाइश आई है राम साबाना जिला सहारनपुर से, श्यामवीर, पूजा देवी, ब्रजपाल और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है गांधीनगर गुजरात से, सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो सुन लेते हैं उपदेश भूलन त्यागी की आवाज में।

0: ਬੇੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਹੋ।
1: तो निरंकार भाई, अभी अब साथियों की फरमाइश पे हमने सुना बुलेंद त्यागी को, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन और भाइयों को
2: राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर
1: और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, जिसे प्रस्तुत किया निरंकार दत्त वशिष्ठ और हेमंत कुमार ने। उम्मीद करते हैं आपके लिए कार्यक्रम बेहद ही लाभदायक होगा। और अब समय है कार्यक्रम गीत गजल का। जी हाँ, जिसमें आप सुनेंगे कव्वाली और गजल, और इसके साथ ही आप जानेंगे बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें। तो कार्यक्रम की जो पहली गजल है वो है चंदन दास के स्वर में, लीजिए सुनते हैं।

इस गज़ल और कवाली के कार्यक्रम में आपके साथ मैं आपकी दोस्त कुसुम लता। जी हाँ, मैं सोच रही थी कि शायद आपका एक पैगाम आ जाएगा कि ये आवाज़ तो हमारी दोस्त की है, और आए भी कई पैगाम, लेकिन उतने नहीं जितने मैं सोचती थी। खैर कोई बात नहीं, दोस्त हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं और धीरे धीरे बताएंगे भी। तो आज आप अपनी इस शाम को कैसे मना रहे हैं? किसी की याद में, चाय की चुस्की के साथ, या फिर कहीं चहलकदमी करते हुए? यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है। जी हाँ, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है। आज कुछ बात तो है जो इस शाम पे रोना आया। शकील बदायूं।

वो ना आएगा हमें मालूम था, वो ना आएगा हमें मालूम था, इस शाम भी इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे।

ये गज़ल आपने सुनी चंदन दास के स्वर में, और लीजिए अब सुनते हैं चंदन दास की ही एक और गज़ल, लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें। उदासी शाम तन्हाई, जी हाँ उदासी शाम तन्हाई, कसक यादों की बेचैनी, मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत और गवा कवाली का ये कार्यक्रम कुसुम के साथ। और लीजिए आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: दी हाँ? ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: ओह लवली वेल डन
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो नया कैमरा नई लाइट्स
10: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
9: नो लोन लिए गए काम में लगाओ समय से EMI चुकाओ क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
10: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
9: आप कौन।
11: RBI कहता है
12: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
13: नमस्कार आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया। और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
14: इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वच्छ और सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि नई पाइपलाइन परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है ताकि हर बस्ती तक विकास का लाभ पहुंच सके। स्थानीय निवासियों ने परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
13: दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिक फार्म वसंत कुंज एनक्लेव और छतरपुर एनक्लेव जैसी प्रमुख कॉलोनियां शामिल हैं। वसंत कुंज एनक्लेव में RWA द्वारा आयोजित एक जनसभा में श्री बिधूड़ी ने कहा कि इन कॉलोनियों में सभी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमित करण आवश्यक है और इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक निर्णय आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सांसदों ने हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। 9 और 10 मई को नवीन शहादरा उत्तर पूर्व नई दिल्ली और करोल बाग जिलों में आयोजित इन शिविरों में संगठनात्मक विषयों कार्यकर्ता विकास और जनसंपर्क कौशल पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
15: इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें विकास के अवसर प्रदान करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए संकल्प और प्रशिक्षण दोनों समान रूप से आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा सुशासन और जन कल्याण की नीतियों के कारण आज देश भर में भाजपा की विचारधारा का विस्तार हुआ है और जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
13: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि सभी दिल्लीवासी और यहां आने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, जिससे राजधानी को बेहतर यातायात वाला शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी बताया। उपराज्यपाल ने वाहनों की सुनियोजित पार्किंग तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर भी जोर दिया, ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे ने उत्तर पश्चिम दिल्ली की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि मुखरबा चौक पर जाम की समस्या कम करने के लिए हैदरपुर बादली स्थित आउटर रिंग रोड पर मौजूदा रेलवे ओवर ब्रिज यानी ROB के चौड़ीकरण को रेलवे की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही शालीमार बाग से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित एलिवेटेड लूप परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम दिल्ली में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित तथा निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ANTF ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में राजधानी को नशामुक्त करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का आयोजन उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा पैम्फलेट तथा ग्राफिक्स के माध्यम से नशे की गंभीरता को सरल तरीके से समझाया गया और प्रतिभागियों को 24 घंटे उपलब्ध 1933 मानस हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को संरक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य उपलब्ध कराना है। राजधानी में लाजपत नगर स्थित विलेज कॉटेज होम में बच्चों से मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बच्चा या युवा खुद को अकेला, असहाय या उपेक्षित महसूस ना करे, इसके लिए सरकार 18 वर्ष की आयु के बाद भी उनका साथ देगी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर समस्त माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज देश भर में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माताओं के त्याग, स्नेह और समर्पण को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ केवल एक संबंध नहीं, बल्कि वात्सल्य, त्याग, संस्कार और अटूट स्नेह की वह शक्ति है जो जीवन को दिशा और संवेदना प्रदान करती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज मदर्स डे के अवसर पर राजनिवास में थैलेसीमिया से पीड़ित

0: बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान श्री संधु ने कहा कि थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चों के साहस और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत का प्रतीक हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मदर्स डे के अवसर पर कालीबाड़ी मार्ग स्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। पहलवान दीक्षा मलिक ने कहा कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और हर व्यक्ति को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।
1: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं साइकिलिंग करते हुए।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 1857 में आज ही के दिन हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब देशवासियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया और राष्ट्रभक्ति की अमर ज्योति प्रज्वलित की। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने घोषणा की है कि राजधानी के सभी 13 जिलों में कल से एक विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। राजधानी के पूट खुर्द स्थित अपना घर आश्रम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आश्रम लाया जाएगा, जहां उनके चिकित्सा उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 19 विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य 300 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाना है। श्री सिंह ने बताया कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वन विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस 5 दिवसीय अभियान के दौरान 2400 घंटे समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दी, ये देख
3: कैसे।
4: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: Saving करने की भी यही उम्र है।
6: I know, pa. Save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है
2: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: ओह लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
10: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए। विगत 30 अप्रैल को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया।
1: नमस्कार, ये युवा लेखनी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी दिल्ली की एक विशेष प्रस्तुति है। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसीलिए की गई कि हमारे युवा साथी अपने समाज को जैसा देखते हैं, जैसा समझते हैं और कभी कभी जैसा लिखते हैं वो उसी रूप में हमारे साथ बिना झिझके बिना डरे साझा कर पाए। वैसे भी इन दिनों हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। प्रसारण और संवाद की आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा को हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में भी यही प्रयास है और इसीलिए युवा साथियों को ये प्रतिष्ठित मंच हम उपलब्ध करवा रहे हैं अपनी रचनाएं साझा करने के लिए, ताकि पठन पाठन की परंपरा जारी रहे। एक मधुर धुन हमने इस कार्यक्रम के लिए तैयार की है, आइए धुन सुनते हैं।

0: हम जानते हैं दिल कुछ कहता है और कई बार बहुत कुछ कहता है। तो जो भी आपका मन करता है जब आप उसे कागज पर उतारते हैं तब वो आपकी रचना होती है, लेकिन इस मंच पर सुनाने के बाद वो हम सबकी रचना हो जाएगी। तो मैं यहाँ इसी प्रयोजन के लिए अब आमंत्रित कर रही हूँ सबसे पहले अपने साथी हिमांशु पांडेय को। हिमांशु अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हिमांशु।
1: मित्रों नमस्कार। कविता लिखी नहीं जाती, कविता लिखवाई जाती है। टूटे हुए दिल से, कंपन करती हुई धमनियों से, जलते हुए रक्त से, कुछ एक ऐसा ही गीत सुनना दोस्तों। वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा, उन निगाहों की माया को अब क्या कहें। जब से उतरा हृदय में असर प्यार का, जब से उतरा हृदय में असर प्यार का, सोचता हूँ कहाँ और कब क्या करें। वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा, पंक्तियाँ सुनना। एक चकोरी चपल सूरते खाब जो चांदनी रात में चांद सी हो गई, ओ कामनी सी परी अवतरित जो हुई, धरती ऐसे लगे स्वर्ग सी हो गई, धरती ऐसे लगे स्वर्ग सी हो गई, ऐसा महका समा की महकता गया, ऐसा महका समा की महकता गया, उसमें महकी जो मूरत उसे क्या कहें। वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा, उन निगाहों की माया को अब क्या कहें। जब से उतरा हृदय में असर प्यार का, सोचता हूँ कहाँ और कब क्या करें। वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा।

और प्रेम में डूबकर जब पंक्तियां लिखी जाएं कि धड़कनों से जो धड़कन मिली इस तरह दिलबरों के दिलों का तर्पण हुआ, और बारिशों में जो भीगा ये तन मन तेरा भीगे भीगे अधर का समर्पण हुआ, ऐसा बरसा वो सावन बरसता गया, ऐसा बरसा वो सावन बरसता गया, उसमें डूबी जवानी को अब क्या कहें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा। और अब सुनाने जा रहा हूं दोस्तों गीत की आखिरी पंक्तियां और गीत का निचोड़, कि जो हो पावन से पावन तेरे प्यार में एक शरारत भी ऐसी कर दूंगा मैं, जो लिखी जाएगी हर शिला लेख पर एक इबारत ऐसी भी गढ़ दूंगा मैं, जो लिखी जाएगी हर शिला लेख पर एक इबारत ऐसी

0: तुम्हारी कसम पूछ लेगी ये दुनिया कि अब क्या लिखें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा, उन निगाहों की माया को अब क्या कहें। जब से उतरा हृदय में असर प्यार का, सोचता हूँ कहाँ और कब क्या करें, वो निगाहें जो बेचैन कर दें सदा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो हिमांशु पांडे ने श्रृंगार के साथ शुरुआत की, और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सपना राज पांडे को। आइए जानते हैं सपना हमारे साथ अपना कौन सा भाव साझा करना चाहती हैं।
2: नमस्कार, मैं सपना अपने सो विचारों से सबकी समस्याएं सुलझाती हूँ। मैं कविताएं सुनाती हूँ और मैं MBBS फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, लेकिन कविताओं का शौक रखती हूँ। तो आज यहाँ प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी कलयुग रामायण लेकर। मैं अपने आप को इस कलयुग की सीता समझती हूँ और अपने राम के खोज में व्याकुल। इसी से प्रारंभ करेंगे कविता है, सुनिए। समस्त लोक संसार में, बैकुंठ में, हर काल में, हर ओर दिलाशा दिखती है, ना मेरी अभिलाषा मिटती है, कान्हा बने सब कुष्ट हैं। विशिष्ट की तलाश में सीता समन ये रुष्ट है, कि सुपर्णखा भरी पड़ी हरने को व्याकुल खड़ी, क्या उम्र यूं ढल जाएगी, उन्हें पाने की आस में सीता खड़ी है सूक्ष्म यूं भूलोकन बनवास में, क्या राम मेरे मिल पाएंगे इस कलयुग में कैलाश में। अगर राम मेरे मिल जाएं तो मंजर वो पावन कैसा होगा, चमकेंगी आंखें, थिरकेंगी अधरें, हृदय अबोध सा मानो चंचल सा कोई बच्चा होगा, तो मैं उन्हें क्या कैसे मनाऊंगी। इस पर अगली पंक्तियां हैं, तो सुरमा है सूरत में तेरी साफ पढ़ती हूँ,

0: से डरती हूँ। मतलब जग में जैसा होता है हरदम वैसी ना कोई रीत हो, काल कपाल विकराल बने हालत बेहद विपरीत हो, व्यवसायी सारे व्यस्त बने लाखों में न कोई मीत हो, उपभोग के भोग को चखने में ये दुनिया जब अधिकृत हो, सब मोह माया त्याग मनुष्य भूला अपना हर प्रीत हो, उस घड़ी घटा बन घेरोगे क्या, मिलने क्या मुझसे आओगे, छोड़ छाड़ सब दुनियादारी समझ क्या मुझको पाओगे, साथ मेरे हर कमियों के क्या मुझको तुम अपनाओगे, साथ तुम्हारा देना है बस क्या मेरे बन पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मीठी सी आवाज, रोचक अंदाज और छंदों की बरसात के साथ ये थी MBBS की छात्रा सपना राज। बहुत ही रोचक अंदाज में उन्होंने अपने भाव हम तक पहुंचाए। मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूं आशुतोष अश्क को। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए मंच पर आशुतोष अश्क का।
2: इस तारुफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि मैम ने बताया, मेरा नाम आशुतोष शर्मा अश्क है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मास्टर्स का छात्र हूँ। मैं एक गजल से शुरुआत करता हूँ, मतला है सुनिएगा। कि किसी का यूं भी रिश्ता चल रहा है, किसी का यूं भी रिश्ता चल रहा है, कोई एक शख्स तन्हा चल रहा है। किसी के हिस्से में गुमनामियां हैं, किसी के हिस्से में गुमनामियां हैं, किसी का यार सिक्का चल रहा है। किसी के हिस्से में गुमनामियां हैं, किसी का यार सिक्का चल रहा है। शेर सुनिया कि हमारे हाथ में तेरी घड़ी है, हमारे हाथ में तेरी घड़ी है, हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। हमारे हाथ में तेरी घड़ी है, हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। वफा का पाठ जो माने पढ़ाया, वफा का पाठ जो माने पढ़ाया, फकत उससे गुजारा चल रहा है, फकत उससे गुजारा चल रहा है। एक गजल के कुछ शेर मतलब से शुरुआत करूँगा मैं। कि दो मिसरों में दुनिया प्यारी लगती है, दो मिसरों में दुनिया प्यारी लगती है, लेकिन इसमें उम्र हमारी लगती है, लेकिन इसमें उम्र हमारी लगती है। इश्क को साहब आग का दरिया बनने में, इश्क को साहब आग का दरिया बनने में, सच बतलाऊं एक चिंगारी लगती है, सच बतलाऊं एक चिंगारी लगती है। शेर सुनिए कि यूं ही नहीं हम सीना तान के चलते हैं, यूं जीने में बड़ी खुददारी लगती है, यूं जीने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं जीने में एक नज़्म कि तुमने देखा भी है कभी उसको, तुमने देखा भी है कभी उसको, उसकी आँखों को, उसके चेहरे को, उसके जुल्फ़ों की हर एक लटकन को, उसके हाथों के हर एक कंगन को, उसके होठों को ज़रा गौर से देखो, देखना है तो मेरे तौर से देखो। ये लव महज पंखुड़ी भर नहीं है, इनमें एक आसमां है दूसरा ज़मीं है, जिसको बनाने में आँखों में गड्ढे पड़े हैं। तुम्हें तो वो तस्वीर यूं ही मिली है, वो नहा करके जुल्फें झटकती है तो ये हवाएं और नमदार हो जाती हैं, उसको छूने को हर शय मचल जाती है। वो नहा करके जुल्फें झटकती है तो ये हवाएं और नमदार हो जाती हैं, उसको छूने को हर शय मचल जाती है। रंगीन तौलियों में तकरार हो जाती है, वह जो उसके कानों के झुमके हैं, वह जो उसके कानों के झुमके हैं, वह कोई देवता पिछले जन्म के हैं, जो उसके गालों को रोज चूमेंगे, नशे में आठों पहर झूमेंगे। मैं दावा कर रहा हूँ ये फिर से, हर एक पत्थर से, हर एक संगदिल से, उसकी बातों में ही खो जाओगे, तुम भी उसके दीवाने हो जाओगे। तुमने बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने देखा ही नहीं है उसको, उसकी आँखों को, उसके चेहरे को। एक छोटी सी कविता आखिर में जो है, अगर मैं आप सबका जितने भी लोग प्रेम में हैं उनका दुख अगर मैं बयां कर पाऊँ तो मैं आपकी दाद चाहूँगा। एक बात बताओ पंडित जी, हमको समझाओ पंडित जी, ज़रा हाथ देख कर बतलाओ, अगर दिखा सको तो दिखलाओ। ये रेखाएं क्या कहती हैं, चंदा सूरज का क्या मन है, क्यों मंगल मुझसे रूठा है, और लग्न में कैसा अवगुण है, जब प्रेम किया था तब भी तो, या आसमान था तारे थे, पंडित था यह दुनिया थी, और ग्रह नक्षत्र भी सारे थे। अब जब मैं प्रीत लगा बैठी, अब जब मैं प्रीत लगा बैठी, सब राह में आड़े आते हैं, क्यों भाग्य रुकावट बनता है, क्यों गुण नहीं मिल पाते हैं। कुछ राह दिखाओ पंडित जी, हमको मिलवाओ पंडित जी, एक बात बताओ पंडित जी, हमको समझाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो आशुतोष अश्क ने बहुत ही प्यारी सी एक फरियाद की, हमको मिलवाओ पंडित जी। कई बार ये काम कविता भी कर देती है और बहुत अजनबी जो लोग होते हैं उन्हें बेहद अपना बना देती है हमारी रचनाएं। अब मंच पर आप सभी के समक्ष हैं आदित्य मौर्य अपनी रचना के साथ। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से हम करतल ध्वनि से आदित्य का स्वागत करें।
3: नमस्कार, मेरा नाम आदित्य मौर्य है। मैं यहाँ दिल्ली में SSC एस्पिरेंट हूँ और मेरा जो झुकाव है कविता और गजलों की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कुछ काम है मेरे, सुनाता हूँ। एक मतला और एक शेर से शुरू करता हूँ कि आइए ज़रा सा और पास बैठिए, आइए ज़रा सा और पास बैठिए, साथ दीजिए मेरा उदास बैठिए, साथ दीजिए मेरा उदास बैठिए, और मुझसे अगर खफा हैं तो खफा रहें मगर, मुझसे अगर खफा हैं तो खफा रहें मगर, पास और पास और पास बैठिए, पास और पास और पास बैठिए। बहुत शुक्रिया। बतौर ख़ास शेर देखें, मेरा पसंदीदा शेर, उसको खुश देखकर मैं खुश हूँ मगर, उसको खुश देखकर मैं खुश हूँ मगर, उस खुशी का असर उदासी है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और देखें कि जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, अब तो बेकार हो गया हूँ मैं, और जिसपे न ध्यान दे कभी कोई, ऐसा किरदार हो गया।

0: गया हूं मैं, जिस पे न ध्यान दे कभी कोई, ऐसा किरदार हो गया हूं मैं। और अच्छा होता, अच्छा होता कि बचपना रहता, क्यों समझदार हो गया हूं मैं, क्यों समझदार हो गया हूं मैं। और शेर देखें कि सबसे पहले मुझे हो तेरी खबर, सबसे पहले मुझे हो तेरी खबर, इतना हकदार हो गया हूं मैं, इतना हकदार हो गया हूं मैं। और सुबह होते ही तेरे दर पे हूँ, सुबह होते ही तेरे दर पे हूँ, जैसे अखबार हो गया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया।
1: तो ये थे हमारे साथ ही आदित्य मौर्य, अपने भाव इन्होंने हमारे साथ साझा किए। मैं अंतर्मुखी होकर कविता में अपने को एक वाक्य देता हूँ कि चलो निकलो। इस वाक्य में बाहर लिखना भूल जाता हूँ, इसलिए अपने अंदर और निकल जाता हूँ। तो अंतर मन के जो भाव हैं वो हमारे साथ ही हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मंच पर इस समय हमारे साथ हैं रश्मि सिंह। आइए रश्मि सिंह को सुनते हैं, क्या भाव हमारे साथ साझा करना चाहती हैं।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर रही हूँ और द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। कविता की शुरुआत करूंगी जिसका शीर्षक होगा आज मौसम गुमशुदा है। मैं सुर्खियां बटोरती हूँ शाम की बहार से, तलाशती हूँ मैं सुकून अब लाले माँ की धार से। बेरंग काल अंत में जो रंग सिसकियां लिए, बेईमान ओस है ढके अब धुंध के सवार से। कुछ शरारते छिपी हुई हैं इस कदर कि जान कर भी भूल जाती हूँ मैं सार से, और अगर जान भी गई तो

0: लिखे हुए अनेक नज्म मुस्तकिल रहें, लिखे हुए अनेक नज्म अफसाने कहे हर कवि शौके विस्तार से। है लाजमी शामों के ढलते रंग में लिखना, जब हो मुकम्मल चाय भी लिखने के भार से। सैलाब आता है अनेक शब्दों को लेकर, थरकता नाचता फिर है बहारों के प्रहार से। क्या समझा क्या जाना है मैंने सुरमे की रंगत को, हुआ जो आज मौसम गुमशुदा गालिब खुमार से। हुआ जो आज मौसम गुमशुदा गालिब खुमार से। जमाने भर की मीठी कागजी हैं स्वांग हसरतें, जो उमड़ी हैं आज खूब जोर मौसम गुहार से। मैं खुद को थाम थाम देख कर महसूस करती हूँ, ये सांझ मुझको सांवरा कहती निखार से। ये सांझ मुझको सांवरा कहती निखार से। और अंतिम पंक्तियाँ हैं कि तलाश काफ़ी ये की कभी की ना हमने थी, पर हार गए आज हम मौसम की मार से। ख्याल में जिसे कभी आवारा जाना था, मेरी कलम से उतरा है वो बेबहार से। मेरी कलम से उतरा है वो बेबहार से। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: युवा लेखन श्रृंखला का ये आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चल रहा है कुछ कहता है दिल। अब मंच पर आप सभी के समक्ष गौरव त्रिवेदी।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्रिवेदी दिल्ली से आप तक अपने चंद अशार पहुंचाने आया हूं। मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूं। हमारे दरमियां शिकवा गिला होने से पहले थे, बहुत ही खुश थे हम लेकिन जुदा होने से पहले थे। बहुत ही खुश थे हम लेकिन जुदा होने से पहले थे। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है इसको मत मना करना। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है इसको मत मना करना। वही बन जाओ तुम जो बेवफा होने से पहले थे। बहुत शुक्रिया। मुक्तक है कि कोई बतलाए काश ये तुमको, उम्र गुजरी है सोचते तुमको। एक लड़का तमाम दुनिया में खो गया ढूंढते हुए तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर और देखें। एक लत लगी हुई थी मुझे, लत नहीं रही। एक लत लगी हुई थी मुझे, लत नहीं रही। ये क्यों कहूँ कि मुझको मोहब्बत नहीं रही। एक लत लगी हुई थी मुझे, लत नहीं रही। ये क्यों कहूँ कि मुझको मोहब्बत नहीं रही। मुझको किसी के साथ ने ऐसा सबक दिया, मुझको किसी के साथ ने ऐसा सबक दिया, मुझको किसी के साथ की आदत नहीं रही। बहुत शुक्रिया। बहुत
1: बहुत ही संतुलित शब्दों में बहुत सारी शिकायतें जो हैं गौरव त्रिवेदी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पहुंचाई हैं कहीं किसी खास तक, और हम सब उसके साक्षी बने हैं। मैं मंच पर अब आमंत्रित कर रही हूं निखिल कौशिक को। निखिल।
3: नमस्कार साथियों, मेरा नाम निखिल कौशिक है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। कविता जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है खोज। और ये हम सभी के बारे में है, क्योंकि हम सभी दोहरी जिंदगी जीते हैं। हम सभी के अंदर दो शख्स हैं। एक वो शख्स है जो हम अपने जीवन में कभी ना कभी बनना चाहते थे, और एक वो शख्स है जो हमारी वास्तविकता है। असल में कामयाब वही शख्स है जिसके ये दोनों शख्स एक ही हैं। अगर ये आपके दोनों शख्स जुदा हैं तो आप अपना सारा जीवन अपनी ही खोज में बिताते हैं। तो उसी के बारे में, ये शांत रही महफिल में एक आवाज़ है जो गूंज रही है। ये दिल में छुपी हुई मेरे कोई बात ढूंढ रही है। वो आईने में दिखाई दे रहा शख्स कुछ जाना पहचाना सा तो है, पर वो मैं नहीं। सांस लेता शरीर तो साथ है यहाँ, मगर जिसे जीना था वो मैं और कहीं। मैं हूँ या तुम हो, चाहे हो ये सारा जमाना, हम सब कहीं ना कहीं खाली है। खालिस सा बाकी कुछ है नहीं हम में, अब जो दिखता है वो थोड़ा जाली है। जीना वैसे जैसे हमको जीना था, फिर भूलना और वैसे जीना जिसमें जीने जैसा है नहीं। बैठेंगे और सोचेंगे किसी दिन, ये सवाल करेंगे खुद से, ये सब कुछ कुछ वैसा है नहीं। वो छोटा सा बच्चा जो मैं कभी था, उससे मैंने कुछ वादे दिए थे। बड़े होके ऐसा बनना है, कुछ बड़ा करना है, मैंने उससे ऐसे इरादे किए थे। मिलना तू मुझे बड़े होके, देखना ये बचपन मिसाल बन जाएगा। ये जो ताने लोगों के संभाल के रखना, ये दिन एक दिन बवाल बन जाएगा। अब खोज रहा है वो छोटा बच्चा उस नए अपने रूप को। हूँ सामने मैं खड़ा, पर नहीं जानता वो अपने स्वरूप को। कैसे जानेगा वो मुझे इस उलझे से हाल में। इतना बदल चुका हूं मैं न जाने इतने साल में। खोज तो मैं भी रहा हूं बहुत कुछ जो पीछे छूट चुका है। कच्चे धागों से बंधा विश्वास मेरा जो अब टूट चुका है। खोज रहा हूं वो अपनी मासूमियत जब मैं हंसना जानता था। है खोज उस सपने की भी जो मुझ में बसना जानता था। आज जब मैं खुद के उस छोटे से रूप को देखता हूं ना, तो मुझे उस पर तरस आता है।

0: क्या सोच के बोला होगा वो सारी बातें, वो गुस्सा खुद पे बरस जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं कि कहाँ खोया हूँ मैं, बस ये रास आता है ऐसे रुसवाई के लिए। पर ना जाने जंजीरें डर की कितनी तोड़नी होगी खुद ही की रिहाई के लिए। खोज रहा हूँ खुद को ही, कहीं तो मिल जाऊँ, वक्त चुराती दुनिया में कहीं खुद को भी तो पाऊँ। पर सोचता हूँ जब मिलेगा वो तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा, जो वादा किया था बरसों पहले उसे वो कैसे दिलाऊंगा। वो सोच, वो जज्बा, वो गायब हो रहा है। वो आग, वो जुनून क्यों थम सा गया है। वो चाहत कुछ बनने की, दुनिया बदलने की, वो हंसी, वो सुकून अब क्यों गम बन गया है। पूछना है खुद से भी, क्या वो जो मैं हूँ और जो होना चाहता हूँ कभी एक हो पाएंगे। कांटों सी राहों से गुजरे हम, लिए वो इरादे कुछ करने के, कभी रंग लाएंगे। एक हकीकत है यही कि खोज जारी है मेरी भी और तुम्हारी भी। मिले तो भूलना मत कि ये जरूरी सफर था, एक दौर ये भी था। एक हकीकत ये भी है कि ढूंढा जिसे जमाने में वो आखिर खुद में ही मिलेगा। पर सवाल है कि राहें सीधी थी या जिंदगी का एक मोड़ ये भी था। धन्यवाद।
1: ये थे निखिल कौशिक अपनी रचना के साथ। मनोभावों की निर्मल धारा इस समय हमारे स्टूडियो में है। कार्यक्रम चल रहा है कुछ कहता है दिल, युवा लेखन श्रृंखला है, और अब मंच पर आप सभी के समक्ष है अनुष्का पांडे। तो आइए सुनते हैं अनुष्का क्या हमसे साझा करना चाहती हैं।
2: नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे हिंदी पत्रकारिता मास्टर्स दिल्ली विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। गंगा से प्रेरित होकर मैंने एक श्रृंखला बस शैली में कविता लिखी है जिसको मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। गंगा माँ है, गंगा माँ है, बहुत गहरा नाता है इसका मेरी माँ की, माँ की माँ से। ना जाने कितनी माँओं से कितने कितने दुख हरे हैं इसने, गहरी होती गई दुखों से। दुखी है गंगा इन दिनों, अब कोई उसके तिरे दुख नहीं धोता, फेंकता है अपने विकास का कचरा। एक नदी यह कभी नहीं सह सकती, इसलिए तोड़ रही है गंगा इन दिनों तुम्हारे सारे तटबंध, इसलिए तोड़ रही है गंगा इन दिनों तुम्हारे सारे तटबंध। धन्यवाद।
1: नदी एक लेकिन स्वरूप अनेक, और उनके भाव जो हैं वो अनुष्का ने हम तक पहुंचाए अपनी रचना के माध्यम से। अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूं नव नित्य विनायक को, करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे।
3: नवरण्य निज नव दर्प साध, यह उद्घोष करने आया हूँ। नव नित्य हूँ मैं, प्राणों की चेतना जगाने आया हूँ। विद्वंश विरुद्ध विजय ध्वज लिए आरण्य त्याग में आया हूँ। विजय हो स्वाभिमान युक्त विनायक तब कहलाया हूँ। नमस्कार, मैं नवनित्य विनायक। तो आज मैं आप सभी का परिचय किसी से कराने आया हूँ। अगर आप मेरी पंक्तियों से उनसे परिचित हो पाए तो अपनी करतल ध्वनि से मुझे बताइएगा। कहना है, तेज अतुल्य है उनमें जो मानो सूर्यों का योग हो। कौन टिके क्षण भर को भी, मिलते ढाल कहाँ रवि को। बाणों की है वर्षा देख, देखूं क्या मैं उसकी छवि को। मृग नैनी के नैनों को देख, देखूं क्या मैं किसी रवि को। सूर्य का ताप स्वाभिमान की प्रेरणा, निश्चय का निश्चित स्रोत हो। कौन करे बखान उन नैनों की घायल जिनसे स्वयं रवि हो। तो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नारियों की। अब उनके नेत्रों से चलते हैं उनके भ्रिकुटी, और भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान उनके बिंदी की ओर। कहना है कि भ्रिकुटी भीषण नाद, निज श्रृंगार सज्जित साज देख। मध्य मस्तक मध्य नैन, निज नीर ऊर्जा प्रवाह देख। रक्त रंजित रक्त आंशिक, रक्त रंग प्रभाव देख। बिंदुकित बृंदुक बृंदी से सुशोभित ये ललाट देख। कनक कुंडल कर्ण निज निज कंठ कंठिका माल देख। त्रिलोचन त्रिनेत्र त्रैगुण साधती ये कमान देख। परंतु विडंबना यहीं आती है। ऐसा क्या हो जाता है कि जब इतनी तेज नेत्र वाली हमारी भारतीय नारियों के समक्ष कोई विधर्मी आए तो वो निरस्त्र खड़ी हो जाती हैं। तो उनके अंदर विराजमान माँ दुर्गा को जागृत करते हुए मैंने लिखा कि धारिये तलवार की नैनों में तुम जो थामे हो, बातों में कटार जैसे कमान के वो बाण।

0: कलाई में कंगन हो तो क्या, मुष्ठी में तो तलवार हो, जैसे आभूषण संग शक्ति के गले में मुंडमाल हो। उठा खड़ग शूल अब नारी तो सिंह सवार हो, प्रतीक्षा में कलकि के क्यों, प्रतीक्षा में कलकि के क्यों, प्रतिशोध शर्मसार हो। उठती नजर तुझ पे है जो उनसे अब रक्त प्रवाह हो, जो हाथ पल्लू पर पड़े अब धर से वो किनार हो। ज्ञात हो उस नारी को, ज्ञात हो उस नारी को जिसने उन्हें है जन्म दिया, संहार है कर्तव्य अगर संतान ही शैतान हो। कृष्ण हुए प्रकट तो क्या, कृष्ण हुए प्रकट तो क्या, कंस भी तो जन्म है, निश्चित नहीं ये विश्व में कि हर कोख में भगवान हो। निर्भया तो भयभीत हुई नहीं, निर्भया तो भयभीत हुई नहीं, तुम मोम क्यों गवा रहे, माँ भारती की संतान तुम ये वक्त क्यों लुटा रहे। वो जंघा पीट हंस रहे, वो जंघा पीट हंस रहे, कितनी द्रौपदी कुर्बान हो। सारथी तुम्हारे श्री कृष्ण हैं, अब युद्ध की ललकार हो, अब युद्ध की ललकार हो। अपनी पंक्तियों को विराम देते हुए मैं चार पंक्तियों से आपसे विदा लूंगा कि पृथक माटी की ये खुशबू मैं पग में बांध फिरता हूँ, हिंदी हिंद की गाथा कलम से शान लिखता हूँ, जो भूले हैं जो बिसरे हैं तिमर को लांग नहीं सकते, मैं उनकी जख्म निशानी को यूं सरयाम लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुंदर भावों के साथ शब्द चित्र हमें सौंपे नवनित्य विनायक ने। ये हमारे सभी साथी थे अपनी अपनी रचनाओं के साथ, और अपने मनोभाव आपने हमारे साथ साझा किए, अपने देश को, परिस्थिति को, अपने परिवेश को किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या रचते हैं, वो सब जानकर आज हमें बहुत अच्छा लगा। और यही उद्देश्य है आकाशवाणी का, ये प्रतिष्ठित मंच आप सभी को उपलब्ध करवाने के पीछे, कि आपकी लेखनी जो है वो प्रोत्साहन पाती रहे, आप इसी तरह से सजग रहें, सचेत रहें, आसपास जो देखते हैं उसे रचते रहें, अपने लक्ष्य को इसी तरह से साधते रहिए, लिखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। यही सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूं कि अपनी झिझक जो है थोड़ी देर के लिए उसे कहीं साइड में रख दीजिए, और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आपका स्वागत है। आप इसी तरह से कुछ कहता है दिल में आ सकते हैं अपनी प्रस्तुति के लिए, जैसे आज हमारे ये युवा साथी आए। सभी का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मुझे यानी नीलम मलकानिया को भी दीजिए अनुमति।

0: कहता है दिल।
1: धन्यवाद।
0: कुछ कहता है दिल।
2: अभी आप विगत 30 अप्रैल को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश सुन रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत। आज सोचा क्यों ना आपको एक बहुत पुरानी फिल्म का, ज़्यादा पुरानी भी नहीं लेकिन हाँ कुछ पुरानी फिल्म का एक सुपरहिट गाना सुनाऊं। तो सुनते ही अच्छा संगीत जिसे गाया है।

कुछ गाने पुराने होकर भी बिल्कुल लगता है कि अरे वाह, ये वाला गाना तो बहुत ज़माने बाद सुना है, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। ऐसी याद मेरी भी ताज़ा हो गई ये वाला गीत सुनकर। उम्मीद है कि अब जो आप अगला गीत सुनेंगे ए आर रहमान की आवाज़ में, उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा।

है आपसे विदाई का। और खलबली अब ये भी है कि गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, बच्चे परेशान हैं कहाँ जाएं, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, और घूमना तो बहुत ज़रूरी है। तो सोचा क्यों ना आपको ये गीत सुनवा दूँ और आपकी कुछ परेशानी हल हो जाए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर और अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच

0: مقابله جاري. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में

0: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another

0: प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वजराए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वजरा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वजरा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मम्लकत बनाया गया है। कानून साज कौंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मम्लकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मम्लकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज़ एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइयत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इज्तम से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई ज़रूरतों और नौमौलूद बच्चों की ज़रूरतों को जहन में रख कर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती ख्वातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खरात से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क़यादत वाली SIT ने नासिक में वाक़े महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज़ किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सेहत सयाहत हिफ़ान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। यह दस्तखत वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के 2 रोज़ा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तोसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दिगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है, जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग ख़त्म करने के मकसद से अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुज़ाकरात में खित्ते में तनाज़े को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जंग ख़त्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वज़ीर आज़म

से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज़्यादा खिलाफ वर्जी की, जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। ये अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर्रज़मी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफ़ के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अलमाटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नेहरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया, जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तोसी की है। उन्होंने 2 काबीना वज़ीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम,
1: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम।
0: आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में

एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों में के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Modi launched Project Cheetah in September 2022 by introducing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. It was the world's first intercontinental big cat relocation project. This was followed by the arrival of 12 cheetahs from South Africa in 2023 and 9 more from Botswana in February this year. India is set to host the prestigious 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, Gujarat from today, marking the country's first time hosting the event in 44 years. The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year, which also plays an important role in qualification for the upcoming Commonwealth Games and Asian Games. India, China and Sri Lanka will field the largest squads with 16 lifters each, while Chinese Taipei has 15 participants. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in Raipur, put into bat first. Mumbai Indians posted 166 for 7 in their allotted 20 overs, riding on Tilak Verma's 57. For Bengaluru, Bhuvnesh Kumar claimed 4 wicket haul. In reply, Royal Challengers Bengaluru overhauled the target on the last ball of the match, losing 8 wickets. Krunal Pandya top scored with 73 runs. For Mumbai Indians, Corbin Bosch galloped 4 wickets. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, स्टूडियो की घड़ी अनुसार समय हुआ है 1:10 और 5 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम, जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। यह दोस्तों वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कार्यक्रम होता है, बिना रुके बिना थके एक शानदार बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों की सुरमाला के साथ। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत प्ले होते हैं। लगभग 1931 से लेकर 1965 का जो एक समय होता है, एरा होता है, वाकई एक से एक सुंदर बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों का समावेश बनता है। एक से एक चुनिंदा और बेहतरीन लाजवाब गीत होते हैं, जिसमें संगीतकार भी, गीतकार भी, और जिन साथियों ने जो गीत रचनाएं रची हैं, वाकई बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत रचनाएं होती हैं। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ, कार्यक्रम गीत सुनहरे, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत के साथ, तेरी नज़र में मैं रहूं। हालांकि ये एल्बम है 1857 की, लेकिन ये फिल्म प्रोडक्शन जो ईयर है 1946 की प्रोडक्शन फिल्म है, और इस गीत को संगीत से सजाया है श्याम सुंदर ने, और गीत जो गायक हैं सुरैया और सुरेंद्र की आवाज़ में शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही अलग, डिफरेंट, उत्कृष्ट, बेमिसाल, खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। तेरी नज़र में मैं रहूं और मेरी नज़र में तू तू। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर अंदाज में लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा। जी हाँ, शमा फिल्म से शानदार खूबसूरत रचना आ रही है मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। शानदार रचना, शमा फिल्म 1946 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीतकार रहे हैं कैफी आज़मी और संगीत से सजाए हैं गुलाम मोहम्मद साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल रचना यासी के डर पे झुका जाता है। जी हाँ, फिल्म शमा से मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना शमा फिल्म 1946 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार रहे कैफी आज़मी और संगीत से सजाया था इस शानदार गीत को गुलाम मोहम्मद जी ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, एक बहुत ही प्यारा मस्ती भरा लाजवाब गीत आ रहा है, लारा लप्पा लाई लप्पा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन रचना है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। जी हाँ, अनमोल बेहद खूबसूरत रचनाएं जिसे बेमिसाल उत्कृष्ट रचनाओं में शुमार किया गया है। सन 1931 से लेकर 65 तक का जो एरा होता है वाकई बहुत ही शानदार होता है ना। तो इसी कड़ी में एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, टाइटल लारा लप्पा। फिल्म का नाम है एक थी लड़की, लता मंगेशकर और जीएम दुर्रानी और कोरस और साथ में रफ़ी साहब की आवाज़ में सुंदर खूबसूरत रचना आ रही है। और ये फिल्म रही 1949 प्रदर्शित फिल्म एक थी लड़की। गीतकार हैं अजीज़ कश्मीरी और संगीत से सजाया है विनोद ने। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।

आप सुन रहे हैं दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7। जी हाँ, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव क्यू न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। जी हाँ, एक से एक सुंदर, बेहतरीन, उत्कृष्ट, बेमिसाल रचनाओं का संगम होता है गीत सुनहरे कार्यक्रम में। जी हाँ, एक से एक सुंदर संगीत, बेहतरीन गीत रचना और गायकी वाकई लाजवाब बेहतरीन होती है गीत सुनहरे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास। तो ये फिल्म है नई उम्र की नई फसल, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना है, श्री सुख सुहाग। इस शायद बहुत ही कम सुनने में आता है ये फिल्म का नाम, श्री सुख सुहाग। जी हाँ, 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है और रोशन साहब का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और सुंदर गीत की ओर। कितने प्यारे दिन फिल्म नूर जहां से सुमन कल्याणपुर की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना, जो नूर जहां फिल्म 1967 प्रदर्शित फिल्म रही और गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत से सजाया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

जी हाँ, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। कितने सुहाने दिन आ गए। जी हाँ, सुहाने दिन तो आ ही गए हैं। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर गीत है। और सुनो गज़र क्या गाए, बहुत ही प्यारा सुंदर गीत है। गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में शानदार रचना।

हंस के बिताल दो घड़ी की जवानी है।

जी हाँ, बहुत ही शानदार, मस्ती भरा, शानदार, खूबसूरत गीत, वाकई लाजवाब। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे। इसी कड़ी में एक और शानदार गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा, तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है हे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र

में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 12 cheetahs from South Africa in 2023 and 9 from Botswana in February this year. India is set to host the prestigious 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, Gujarat from today, marking the country's first time hosting the event in 44 years. The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year, which also plays an important role in qualification for the upcoming Commonwealth Games and Asian Games. India, China and Sri Lanka will field the largest squads with 16 lifters each, while Chinese Taipei has 15 participants. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 2:10 और 5 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप। जी हाँ, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी हर्डल के शानदार खूबसूरत गीतों की सुरमाला प्रस्तुत की जाती है और वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन रचनाएँ होती हैं। तो आज मैं हूं आपके साथ गीत बहार कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली शानदार प्रस्तुति के तौर पे सज रही है बेहतरीन खूबसूरत रचना। जी हां, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, फिल्म तीन देवियां से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में शानदार रचना और साथ दे रहे हैं साथी। तीन देवियां फिल्म 1965 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया है SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और शानदार खूबसूरत रचना।

0: பக்கம்மா பக்கம்மா
1: என் கண்ணா என் கண்ணா
2: பக்கம்மா பக்கம்மா.

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: यंग कन्ना
2: बदकम्मा।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात और राजस्थान में आज लू चलने के अनुमान है। पश्चिमी

राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गज़ल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में गज़ल, उनसे जब जब भी।

अभी आप सुन रहे थे हरी हरन की आवाज़ में गज़ल, और लीजिए अब पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल चांद से फूल से।

जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल आपने सुनी, और लीजिए अब अगली गज़ल पेश है घनश्याम वैश्मणी की आवाज़ में, ज़हन पर छाई।

और लीजिए अब पेश है गजल। हर गजल में कुछ नई, अहमद और मोहम्मद हुसैन पेश कर रहे हैं।

0: उसी के साथ ही आज का गजलों का ये कार्यक्रम भी संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वायलिन वादन, कलाकार हैं जी उमा। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

कर्नाटक संगीत कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन, कलाकार थे जी उमा। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडे में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ

और लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही क्षणों में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन से संबंधित जानकारी। देशभक्ति गीतों का समय रहेगा 5:20 पर और 5:30 आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन राग बैरागी, कलाकार होंगी नीपा चौधरी। सुबह 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे भीष्म साहनी के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनिएगा। आज बालकांड का भाग 52 प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा।

0: सुबह 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीतिका। आज आप सुनेंगे निशा के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम का समय रहेगा। 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का। आज के कलाकार होंगे विपुल कुमार राय, आप प्रस्तुत करेंगे राग अहिरी तोड़ी। 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम अवर गेस्ट। आज आप सुनेंगे मीट द पॉइंट। साढ़े 9 का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी जसपाल कौर। 10:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर सबरस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, उससे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। 11:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सरिता पाठक यजुर्वेदी का गायन, आप प्रस्तुत करेंगे राग अलहिया बिलावल। 12:10 का समय रहेगा महिला कार्यक्रम घर आंगन का। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी प्रतिभा नागपाल। और 1:10 पर सुनेगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी 1942 अ लव स्टोरी। 2:30 पर एक ही कलाकार में आज की कलाकार होंगी पूजा बेदी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी नई दिल्ली केंद्र है, 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी शीर्ष में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आशा है कि नया मंत्रिमंडल भाजपा के चुनावी वायदों पर चर्चा करेगा। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों के भी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 18वें सत्र के नव निर्वाचित सदस्य बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तापस रॉय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हतावायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनसे वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा है कि चालक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे 2 भारतीयों को नीदरलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat, Nabanna, today. Portfolios are expected to be distributed among the 5 ministers who took the oath of office and secrecy along with the chief minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Issues such as Ayushman Bharat, Annapurna Bhandar and implementation of the 7th pay commission for state government employees are likely to come up for discussion. A guard of honour will be presented to Chief Minister Suvendu Adhikari at around 11 a.m. today, following which the cabinet meeting will take place. Newly elected members of the 18th West Bengal Legislative Assembly will take oath on Wednesday, Thursday and Friday this week. Senior BJP leader Tapas Roy will serve as the pro tem speaker. US President Donald Trump has described Iran's latest peace proposal as totally unacceptable as efforts continue to secure a deal to end the months-long conflict in West Asia. President Trump wrote on social media that he has read Iran's response from what he called its so-called representatives and said he does not like it, calling it totally unacceptable. Earlier yesterday, Iran said it has sent its response to the latest United States proposal aimed at ending the conflict in West Asia. The response was conveyed through Pakistan, which has been acting as a mediator between Tehran and Washington. Iran's ISNA news agency said Tehran's response focuses on ending the conflict and ensuring maritime security in the Strait of Hormuz, a key global oil shipping route. Iranian President Masoud Pezeshkian said that dialogue with the West should not be viewed as surrender or retreat. Meanwhile, tensions remain high in the Gulf region. Iran has warned that any deployment of French or British warships alongside U.S. maritime operations in the Strait of Hormuz would face a decisive and immediate response. French authorities have confirmed that the nuclear-powered aircraft carrier Charles de Gaulle is heading towards the region as part of efforts led by French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer to restore freedom of navigation in the strategic waterway. The Indian Embassy in Madrid, Spain has said that two Indian nationals aboard a hantavirus-hit cruise ship are safe and asymptomatic. The Dutch-flagged vessel MV Hondius, carrying around 150 people including two Indians, arrived in Spain yesterday and anchored off the Canary Islands following the outbreak. According to the embassy, passengers disembarked in line with protocols issued by the World Health Organization and Spanish authorities. The Spanish National Center for Emergency Monitoring and Coordination said the two Indians who were working as crew members have been evacuated to the Netherlands, where they will undergo quarantine under health safety protocols. The embassy added that the Indian ambassador is in close contact with Spanish authorities and the affected nationals and is closely monitoring the situation to ensure their safety and well-being. Russian envoy has said that Russia does not want a war with NATO or Germany. However, Russian ambassador to Germany, Sergei Nechayev, warned that discussions on joint nuclear shield in Europe could alter the continent's strategic balance. Speaking at a panel discussion in Berlin, Nechayev said any expansion of nuclear threats in Europe would force Russia to reconsider its nuclear doctrine. He warned that Moscow would not be able to guarantee restraint if faced with what he called military threats. And with that, we come to the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:10 मिनट हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनावग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपो थायराइडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।